FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

आराधना। श्रोताओं, मातृभूमि के प्रति प्रेम और आत्मनिर्भरता के संकल्प का परिणाम है कि हम आजाद हैं। देश की असली ताकत उसकी मिट्टी, मेहनत और मानवीयता में है। देश का नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम ईमानदारी, एकता और जिम्मेदारी से अपने देश की प्रगति में भागीदार बनें।

नवाब आरजू का लिखा भक्ति गीत आपने सुना, लखबीर सिंह लखा और साथियों के स्वर में। संगीत निर्देशन नटराज दस्तीदार का था। आराधना कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सोनी चौधरी का गाया गीत। गीत और संगीत पूनम ठक्कर का है।

माता रानी का भजन आपने सुना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, दूसरों के दुख को कम करना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनके कल्याण की कामना करना आनंद का सच्चा मार्ग है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित में जीते हैं, तब एक अदृश्य शांति का उदय होता है और यही शांति आगे चलकर आनंद में बदल जाती है।

सुमिता श्रीवास्तव और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। इसे लिखा था सुशील कुमार ने और धुन तैयार की थी लवली शर्मा ने।

ब्रज सरवरी का लिखा भक्ति गीत आपने सुना, ब्रज सरवरी और साथियों के स्वर में, संगीत आजम अली मुकर्रम का था। और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है पशुओं में विटामिन ए का महत्व। वाचक है अभिनव गौरहा।

0: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। मानव और पशु दोनों मन ल ही दैनिक जीवन में जमो काम करे बर ऊर्जा के जरूरत होते, जेकर पूर्ति बर हम आनी बानी प्रकार के खाद्य पदार्थ के सेवन करथन कराथन, जेकर मुख्य अवयव होते कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन। विटामिन के मतलब कोनो ऐसा जैविक और अति महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ से है जेकर हमन ला बड़ सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होते। विटामिन दो तरह के होते, जल में पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील होते, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते। आज के जानकारी मैं जानबो कि पशु और मुर्गी मन में विटामिन ए के महत्व कौन ढंग ले होते। पशु मन में मुर्गी के स्वास्थ्य और प्रजनन में विटामिन ए के उपयोग के जानकारी आप मन लदी ते भ्रूण के समुचित विकास बर बड़ लाभकारी माने जाते। त्वचा और स्वास्थ्य वर्धक होते, रक्त में कैल्शियम के स्तर बनाए रखे और हड्डी के संवर्धन करे बर जरूरी होते। हड्डी, दांत और उतक के रख रखाव बर आवश्यक होते। ऊर्जा पैदा करे वाले जम्मो कोशिका मन लेकर जरूरत होते। विटामिन ए सफेद रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक करके प्रतिरक्षा प्रणाली में जीवाणु और विषाणु लड़े में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कुकुट मन में विटामिन ए की कमी से न्यूट्रिशनल राउप नामक बीमारी पाचन तंत्र के आहार नाल में होते। कुकुट मन में विटामिन ए की कमी से हड्डी में सूजन मतलब गाउट रोग की संभावना बढ़ जाते। एकर अलावा अंडा के उत्पादन कम होते। अंडा ला से के बाद जिंदा चूजा मन कम आते, चूजा के विकास रुक जाते और कुकुट के पंख के विकास भी उचित नहीं हो पावे। विटामिन ए पशु के प्रजनन में बड़ लाभदायक भूमिका निभाते। मादा पशु के गर्भकाल के दौरान माता और माता के गर्भ में पल रहे शिशु के बीच गर्भनाल या प्लेसेंटा से पोषक तत्व ला खून के माध्यम से आदान प्रदान होते। विटामिन ए के कमी से गर्भनाल के कोशिका के क्षरण हो जाते और कई पैत जन्म के समय से पहले ही मादा के गर्भ में शिशु के मृत्यु हो सकत है। विटामिन ए की कमी से नर पशु के शुक्राणु की संख्या कम हो सकत है और प्रजनन क्षमता घट सकत है। गर्भकाल के समय या बचपन में विटामिन ए की कमी होए से मानसिक परेशानी हो सकत है, जैसे उखर मूड के ऊपर पानी भर जाना, ये सब समस्या आ सकत है। ये दोनों मौका में हम पशु के मूड़े में टेनिस बाल या फुटबॉल के आकार के उभार देख सकते हैं। गर्भकाल में विटामिन ए की कमी से जन्मजात बीमारी या व्याधि जैसे अंधापन, आंखी मत बाल के होना, आंखी के भाव, आंखी के छोटापन, अविकसित पैर, कटे फटे तालू, कटे फटे होंठ हो सकत है। विटामिन ए के कमी ला पूरा कैसे करी? विटामिन ए की कमी ला दूर करे बर पशुपालक अपन पशु और कुकुट मन ला विटामिन ए के स्रोत के जैसे हरा चारा, संतुलित आहार, फिश मील और मीट मील आहार के संग मिला के दे। बाजार में विटामिन ए के दवाई घलाव मिलते। पशु चिकित्सक मन से सलाह लेके पशु मन ला कुकुट मन ला विटामिन ए के दवाई दे सकत, जेकर से हमर पशु मन के अवैया पीढ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सके। तो कुल मिला के किसान भाई हो, हमन अगर पशु मन ला आनी बानी के जेन उखर खवाए बर व्यवस्था थे बाजार में मिलते वो सब के उपयोग प्रयोग करना चाहिए। हरियर चारा भी ओमन लखवात रहन, पैरा ला उपचारित करके देत रही वो, ये सब व्यवस्था करे से हमर पशु मन ला जम्मो प्रकार के विटामिन, खनिज, मिनरल मिलत रही थे, जेकर से उखर दूध उत्पादन, उखर शारीरिक गतिविधि बढ़िया ढंग से चलत रही थी। तो ये बात के चेत करना है के पशु मन ला केवल पैरा मा निर्भर नहीं रखना है, उखरो चेत करे तभे हमन ला लाभ मिले। राम राम, जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, विषय था पशुओं में विटामिन ए का महत्व। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। चिंतन कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर नथमल झंवर का आलेख, सत्य बोलो असत्य से बचो विषय पर।

सत्य असत्य पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय अन्याय इन्हें परिभाषित करना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि परिस्थितिवश इनका स्वरूप बदल जाता है। अब सत्य को ही ले लें, बेशक हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन यदि कोई शिकारी किसी वन्य प्राणी के पीछे पड़ा हो और हमें उसके जाने का मार्ग पूछे तो जानने के बावजूद क्या सत्य बताया जाएगा? इसी भांति यदि असत्य बोलने में मानव जाति का कल्याण होता हो, जनमानस का हित सन्निहित हो, मानव मूल्यों नैतिक मूल्यों की सुरक्षा होती हो, तो वो असत्य सत्य का ही स्वरूप होगा। अब इसका आध्यात्मिक चिंतन करें। महाराज जनक ने स्वप्न में देखे गए दृश्य को देश देशांतर से आए विद्वज्जनों प्रकांड पंडितों ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य हस्ताक्षरों से पूछा, तब किसी ने भी अपने उत्तर से महाराज को संतुष्ट नहीं किया। उसी समय राजदरबार में अष्टावक्र जी का पदार्पण होता है। महाराज ने उनके सामने भी यही प्रश्न दोहराया और समाधान जानना चाहा। तब अष्टावक्र जी ने कहा, राजन न वो सत्य था न ये सत्य है, अर्थात सपने में आपने जो अपना भिक्षुक का स्वरूप देखा उस समय वो सत्य अवश्य भासता था लेकिन सत्य नहीं था। इसी भांति जागृतावस्था में जो आप अपना राजा का स्वरूप देख रहे हैं वो भी सत्य नहीं है, दोनों स्थितियों में केवल आभास मात्र है। सच पूछा जाए तो ये संसार भी केवल आभास मात्र है, सत्य नहीं है। सत्य तो सनातन है, शाश्वत है, सर्वव्यापक है और यह संसार नाशवान है। बंधुवर, सच पूछा जाए तो हम केवल भ्रम में ही जी रहे होते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। यथा हम अपने शरीर को ही स्वयं का स्वरूप मान लेते हैं, जबकि यथार्थ ये है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर तो केवल आवरण है जो हमेशा बदलता रहता है, पुराने वस्त्रों की तरह। ये आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। ये आत्मा नित्य है, अचल है, सर्वव्यापक है और ये शरीर नाशवान। एक भ्रांति और भी है, हम इस जीवन को पहला और अंतिम मान बैठे हैं, जबकि सत्य ये है कि इससे पूर्व भी हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। किसी अंग्रेज दार्शनिक के शब्दों में, बर्थ इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ नॉर डेथ इज इट्स एंड, बर्थ एंड डेथ बिगिनिंग एंड एंड, इट इज ओनली अ चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। बेशक सच बोले, लेकिन ऐसा भी सच किस काम का जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए, किसी का चारित्रिक हनन करे, किसी मर्यादा का उल्लंघन करे, किसी से वैमनस्यता करा दे। गालिब के शब्दों में, सच बोलकर हमने बिगाड़ ली सबसे, जाते रहे हम दुआ सलाम से। इसी भांति धर्म अधर्म को आख्यायित करना हो तो श्रीमद् भागवत पुराण पढ़े, गीता पढ़े, बाइबिल और कुरान पढ़े। गीता तो वासुदेव श्री कृष्ण की ही वाणी है, महाभारत में तो वे ही समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का समूचा जीवन धर्म अधर्म की ही व्याख्या है, उनका जीवन उनकी लीला धर्म अधर्म का ही दर्शन है। उनकी लीला के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो देखने में अधर्माचरण प्रतीत होते हैं, पर वास्तविकता ये है कि रहते हैं धर्म से युक्त। उदाहरण स्वरूप कुछ प्रसंगों का अवलोकन करें। जयद्रथ वध के समय आकाश में सूर्यास्त का आभास करा देना और जयद्रथ के बाहर निकलने के बाद सूर्य का प्रकट कर देना, अश्वत्थामा हतोह हताह का उच्चारण धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से कराना, कर्ण से कवच कुंडल मांगना, अर्जुन के

के सामने शिखंडी को बिठाना, वस्त्रहीन दुर्योधन के माता गंधारी के सामने जाते समय अधोवस्त्र पहनने कहना आदि अनेक प्रसंग हैं जो देखने से धर्म के विरुद्ध आभासित होते हैं। वस्तुतः ये धर्म का विरोध नहीं, अपितु अधर्म, अत्याचार और पापाचार को नष्ट करने और मानव जाति को इनसे मुक्त करने का धर्माचरण है।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर नथमल झंवर का आलेख सुन रहे थे। विषय था सत्य बोलो असत्य से बचो। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है और श्रोताओं इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:10 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम। सुबह 7:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। कार्यक्रम आओ बच्चों का प्रसारण समय सुबह 10:00। सामयिक चर्चा का विषय होगा अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी सुरक्षित भोजन। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े प्राकृतिक खजाने, इस विषय पर भी चर्चा होगी। साथ ही सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम नवीन कला निकेतन पुराना बस स्टैंड बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति। सुबह 7:05 पर सुनेगा ट्रैफिक अपडेट। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर।

0: सदाबहार नगमे सुबह 7:40 पर और नए तराने सुबह 10:30 पर आप सुन पाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:00 से 9:55 तक, 11:00 से 11:55 तक, 12:00 से शाम 5:00 तक और फिर रात 9:15 से रात 11:00 तक। शाम 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा वंचितों को वरीयता। आज रात 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी के पूर्व सहायक ग्रंथालय एवं सूचना अधिकारी श्री विशव कुमार पांडे से सुनील चिपड़े की बातचीत। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन, प्रस्तुति सहयोग सुनील चिपड़े का होगा। शाम 5:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। जिले की चिट्ठी शाम 6:05 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे कार्यक्रम कानून की बात शाम 6:30 पर। संपत्ति विवाद के संबंध में श्री आशुतोष द्विवेदी अधिवक्ता जगदलपुर से की गई बातचीत। कार्यक्रम विवरण आज आप सुनेंगे शाम 6:00। ग्राम सभा कार्यक्रम में शाम 5:05 पर बेरा के गोट में चर्चा का विषय स्वस्थ अन्न के उत्पादन कर बोन। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत भी आप सुनेंगे। ईमेल करें गीत सुने शाम 5:35 पर, शाम 6:20 पर और शाम 7:00 आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:55 हुए हैं। अब समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषत् सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काली

0: 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षो में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट।
4: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है।

0: मित्रों जिले में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 2400 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदाकदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इससे असहज होते हैं, पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार। किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हो ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सके। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है। अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर ना रखें, ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चलें। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। अपने वाहन चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। मालवाहक वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड ना करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है, अतः नशा से दूर रहें। नशा कर वाहन चलाने की गलती कभी ना करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। श्रोताओं एक सूचना सुनी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
2: साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 होने वाले हैं। आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

नमस्कार रायपुर, कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से बातचीत। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी की ये यात्रा शुरू हुई थी 8 जून 2025 को। पूरे एक साल के सफर में आकाशवाणी के लिए समर्पित अनेक प्रसारकों और कलाकारों से हमने बातें की, उनकी यादों के पन्नों को पलटकर अतीत की कई उपलब्धियों के साथ आकाशवाणी से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों को याद किया। आज इस श्रृंखला की ये आखिरी कड़ी है। ये कड़ी जरूर अंतिम है, मगर हमारे सुधी श्रोताओं के अपार स्नेह के साथ आकाशवाणी की ये स्वर सरिता अनवरत बहती रहेगी मधुर ध्वनि तरंगों के संग। तो देश की वाणी आकाशवाणी के इस समापन कड़ी में आज की हमारी खास मेहमान हैं, बड़ी ही मीठी आवाज की धनी, जिनके नाम से आकाशवाणी रायपुर के श्रोता बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आप हैं आकाशवाणी की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीपक, आपने इस अवसर पर मुझे याद किया और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
0: कल्पना जी, आपका ये जो नाम है ना, आकाशवाणी रायपुर के श्रोताओं के जहन में आज भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ गूंज रहा है, आज भी उन्हें याद है, और जब भी वे आपके इस नाम को याद करते हैं उस दौर के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम उन्हें याद आने लगते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी रायपुर से आपका जो जुड़ाव है ये कितना पुराना है?
1: अब ये कहो कि मेरा रेडियो से संबंध बहुत पुराना है। जब मैं पढ़ा करती थी ना दीपक, तभी मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी तो रेडियो में ही जाऊंगी। तो मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मैं रेडियो में जाऊंगी, और रेडियो में मैंने आकाशवाणी रायपुर ज्वाइन 75 में।
0: तो उस समय आप किस रूप में यहाँ आते थे, मतलब नियमित उद्घोषिका के रूप में आप ज्वाइन की थी, किसी और कार्यक्रम में आती थी?
1: ना, पहली बार मुझे यहाँ पर सहायक केंद्र निदेशक थे महेंद्र, तो उन्होंने मुझे एक कहानी पढ़ने के लिए बुलवाया था
0: जी।
1: वो कुंतल जो अंबिकापुर की थी, अपने जमाने की बहुत वरिष्ठ कहानीकार थी, बहुत साहित्यकार थी, वो ऊंची बहुत ऊंची साहित्यकार थी, तो उनकी कहानी उन्होंने मुझसे पढ़वाई थी और उसका रिहर्सल उन्होंने अपने सामने करवाया था। तब दीपक, कहानी कैसे पढ़ी जाती है ये मालूम हुआ कि कहानी पढ़ने का भी एक ढंग होता है रेडियो में।
0: ये किस सन की बात होगी?
1: तब मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, ये बात है 74 दिसंबर की।
0: बहुत पुरानी बात।
1: मेरा अपॉइंटमेंट जनवरी में हुआ था 75 में, और शादी हुई मेरी दिसंबर में।
0: बहुत पुरानी बात है कल्पना जी। तो इस कहानी के बाद सीधे आप अनाउंसर बनकर आकाशवाणी में आ गई?
1: हाँ जी। तो इस कहानी के पीछे भी एक वाक्या जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: मैं कहा करती थी ना कि मैं रेडियो में जाऊंगी, और लकीली जगदलपुर, ग्वालियर और रायपुर के लिए जगह निकली थी उद्घोषकों के लिए, और इसका इंटरव्यू हुआ था आकाशवाणी भोपाल में। तो वहाँ पे जितने भी उम्मीदवार थे वहाँ पर गए, और वहाँ से हमें चयनित किया गया रायपुर के लिए, और हमसे पूछा था कि अगर आपको हम ग्वालियर दे दें या जगदलपुर दे दें तो क्या आप जाएंगे? तो हमने बड़ी कहा कि सर, हम नौकरी करने के लिए निकले हैं तो हम तो जाएंगे, अगर आप ग्वालियर भेजेंगे तो हम ग्वालियर चले जाएंगे, आप जगदलपुर भेजेंगे तो हम जगदलपुर चले जाएंगे, मगर मुझे उन्होंने रायपुर ही दे दिया।
0: तो कल्पना जी, उस दौर में जब आपने जनवरी 1975 में उद्घोषक के पद पर यहाँ आकाशवाणी रायपुर में अपने कार्यों की शुरुआत की, तो यहाँ पर और कौन लोग हुआ करते थे?
1: अरे, हमारे जमाने के मतलब बहुत ही प्रवीण उद्घोषक हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं नाम बता रही हूँ दीपक तुम्हें, आदरणीय किशन गंगेले,

0: जी, आदरणीय लाल राम कुमार सिंह जी और आदरणीय मिर्जा मसूद जी, इन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और इनसे मैंने सच में बहुत बहुत बहुत कुछ सीखा।
1: ये तो तीनों आकाशवाणी रायपुर की वो त्रिमूर्ति हैं जिन्हें प्रसारण में लेजेंड माना जाता है, आकाशवाणी रायपुर के प्रसारण के लिए। तो इनके साथ में कौन कौन से प्रोग्राम आप किया करती?
0: मैंने सबके साथ सभी कार्यक्रम किए हैं, और जैसे आपके पत्र, आपके मीत, ये गीत, अजी सुनिए, और जब मिल बैठे हम, और मैं बिंदिया, मैंने ना बहुत सारे कार्यक्रम भूल रही हूँ। हाँ, एक बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था किसले उस
1: जी,
0: समय।
1: जी जी। अच्छा कल्पना और, जी, आप तो नाटकों में भी भाग लिया करती थी?
0: हाँ, नाटक में भी मैं काम किया करती थी, और बी हाई ग्रेड था मेरा, सिलेक्शन हुआ था मेरा, पहले तो बी हुआ करता, उसके बाद बी हाई ग्रेड जिसको बोलते हैं अपन, उसमें सिलेक्शन हो गया था।
1: कल्पना जी, जिस वक्त आप पानी में आई उद्घोषक के रूप में, सन 1975 के बाद की अगर दौर की बात करें तो वो वाकई रेडियो का ही दौर था, और रेडियो के अलावा कोई और माध्यम लोगों के घरों में हुआ करता था। तो उस वक्त किस तरह का चार्म था रेडियो का, रेडियो के प्रति लोगों की रुचि, और रेडियो में जो प्रसार करते थे उनके प्रति लोगों का जो लगाव हुआ करता था, उसके तो बड़े किस्से हुआ करते थे उस जमाने में। आपके साथ भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी होंगी?
0: दीपक, तुमने सच में बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया ये। जब मैं, तुम्हें पता होगा कि पहले ट्रांसमीटर से हमारा कार्यक्रम हुआ करता था,
1: जी,
0: तो स्टूडियो नहीं बना था,
1: जी,
0: है ना?
1: जी।
0: तो हम आपके मीत ये गीत पेश किया करते थे जब हमारी ड्यूटी होती थी या यह होती थी, तो बहुत से ऑफिस के सब लोग ना बाहर निकल जाया करते थे पान की दुकान पर,
1: जी,
0: और सुना करते थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और श्रोता भी इंतजार करते थे कि आज कल्पना जी आई है, वगैरह वगैरह जो भी हुआ करते थे। और दीपक, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत से लेटर भी, आशिकाना लेटर भी आते थे कुछ होता
1: जी।
0: कुछ होता कि आप अपनी फोटो भेजिए, हम दिल से लगा के रखेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, और बोलते थे कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप मेरी बहन के जैसे हैं, और किसी ने कहा कि मैं आपकी फोटो दिल से लगा के रखूंगा और मतलब अब मैं क्या बताऊं, मुझे श्रोताओं से बहुत बहुत बहुत प्यार मिला दीपक, बहुत प्यार मिला।
1: कल्पना जी, वो दौर ही वाकई रेडियो का एक सुनहरा दौर था, और उसमें में तो टेलीविजन लोगों के घरों में था भी नहीं। टेलीविजन तो 80 के बाद फिर लोगों के घरों में आया, जब हमारे यहाँ एशियाड 82 के बाद। अगर टेलीविजन के आने के बाद भी रेडियो का एक चार्म तो बना ही हुआ था, खासकर
0: अभी भी दीपक, अभी भी है, जो
1: बिल्कुल,
0: शौकीन
1: बिल्कुल,
0: है वो रेडियो के अलावा दूसरा कुछ सुनते ही नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, ये होता है ना कि एक उद्घोषक जब आकाशवाणी के कैंपस में अपने कार्यक्रमों में पूरी तरह से समर्पित होकर श्रोताओं के लिए एक से एक प्रोग्राम पेश करते हैं, तो हाँ, उस कार्यक्रम को सुनने के बाद में उनकी एक छवि श्रोताओं के मन में चारों तरफ, चारों दिशाओं में उनके नाम गूंजते हैं, उनके कार्यक्रम गूंजते हैं। और उसके बाद जो वो व्यक्ति जब आकाशवाणी कैंपस से बाहर निकलता है, अपने शहर से बाहर निकलता है, किसी यात्रा में जाता है, किसी से मुलाकात होती है, और उस वक्त जब लोगों को पता चलता है कि मैं तो कल्पना यादव जी के सामने खड़ा हूँ, तो कैसा लगता था श्रोताओं को उस समय आपसे मिलकर?
0: दीपक, वाकई में तुमने जो ये यादें, सुनहरी यादें दिलाई ना, यकीन मानो मैंने रोंगटे खड़े हो गए हैं। कई वाक्य हैं ऐसे
1: जी, जी,
0: बहुत सारे, मतलब मेरे सामने ऐसे जिंदगी के में हैं जिन्हें मैं भुलाई नहीं भूलती। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा बेटा, तब मेरा बेटा 7-8 साल का रहा होगा
1: जी,
0: हम ट्रेन से आ रहे थे, तो आदमी एक सज्जन जो है मुझे बहुत घूरे जा रहे थे।
1: अच्छा जी,
0: तो बेटे को बहुत गुस्सा आया, वो मेरे पास आ गया, बोला माँ ये आपको क्यों घूरे जा रहा है, तब ये 7-8 साल का ही रहा होगा
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि बेटा हमें क्या मालूम है क्यों घूर रहे। इतने में वो व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल्पना यादव है? मैंने कहा कि जी हाँ, मैं कल्पना यादव हूँ। तो बोले कि हम आपके कार्यक्रम सुनते हैं, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, वगैरह वगैरह। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब वो शब्द भी याद नहीं है, और अपने मुँह बोलना उन शब्दों को, पर एक यादगार तो रहती है।

0: होती है। एक वाक्य मुझे बहुत मतलब बच्चे के साथ बहुत अच्छा लगता है कि उस जमाने में, फिर बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कि इसलिए मुझे घूर रहे थे।
1: अच्छा कल्पना जी, जिस वक्त आकाशवाणी रायपुर में एक से बढ़कर एक ड्रामा बना करते थे, झलकियां हुआ करती थी, पत्रोत्तर के
0: हाँ
1: कार्यक्रम में भी आप भाग
0: जी,
1: लिया करती थी,
0: हाँ हाँ
1: और ट्रांसमिशन ड्यूटी भी आप किया करते हैं ना,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: ट्रांसमिशन ड्यूटी इंसान को वक्त का बड़ा पाबंद रहना सिखाती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: खासकर
0: बिल्कुल
1: मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, सुबह की सभा में। बिल्कुल, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो एक अनाउंसर जाग कर सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक आकाशवाणी पहुंच जाता था। और
0: बिल्कुल
1: इस
0: बिल्कुल
1: ट्रांसमिशन ड्यूटी में भी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बड़ी एडवेंचर क्रिएट करने वाली घटनाएं होती हैं, कि आप पता चल रहा है कि कई बार हम विलंब से पहुंचे और कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले पहुंचे, तो इस तरह की कभी कोई घटना आपके साथ घटी है क्या?
0: एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि मेरा घर तो बहुत पास था, जब ये स्टूडियो की बात है, जब अपना सिटी में ट्रांसफर हो गया था, ये वाला अपनी बिल्डिंग बन गई थी आकाशवाणी की,
1: जी
0: तो मेरी दीपक, तुम यकीन मानो 5 मिनट पहले मेरी नींद खुली, ओपनिंग होने के पहले
1: जी
0: मैं जिस ड्रेस में थी, जिस नाइट सूट में थी, मैं भागे भागे वहां पर गई ना, और उसमें ही मैंने ओपनिंग किया और पूरा शहनाई वादन वगैरह जो जो होता है अपना
1: जी
0: पूरा
1: जी
0: ओपनिंग किया, और उसके बाद मैंने ड्यूटी ऑफिसर से बोला कि मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं घर से तैयार होकर आती हूँ। तब तक वो कार्यक्रम भोपाल से रेले हुआ करता था,
1: अच्छा, फिर आप घर गई
0: तो
1: वापस।
0: मैं घर वापस गई और
1: जी
0: फिर तुरंत तैयार होकर फिर मैं वापस आई।
1: कल्पना जी, हमने सुना है कि आपका जो परिवार है वो फौजी परिवार रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: दीपक, हमारी शादी की बात चल रही थी, 76 में हमारी शादी हुई,
1: जी
0: 75 से तो ये एक बार ऐसे देखने के लिए आए, और इनको मालूम था कि मैं रेडियो में कैजुअल जाती हूँ और ये करती हूँ, तो ये गाना हरदम ये लगा दिया करते थे, पल पल तुम दिल के पास रहती हो, है ना। जब शादी हुई तो अब हम एक बार गए फील्ड पे, फील्ड पे स्टेशन में फैमिली नहीं रख सकते हैं दीपक,
1: जी जी
0: मगर 2 महीने या 1 महीने के लिए फील्ड स्टेशन खोल देते हैं फैमिली को आने के लिए। तो हम लद्दाख गए, वहां पर जो हमारा मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया जिसकी कोई हद नहीं है, मेरी और कर्नल यादव की तो
1: ओ
0: ऐसी बैंड बजाई उन्होंने और हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
1: अच्छा
0: बोले मिसेज यादव, यदि वहां पे मिसेज यादव फर्स्ट नेम नहीं लेते हैं
1: जी
0: फौज में, मिसेज
1: जी
0: यादव, बोले मिसेज यादव ये जो है ना आपका कार्यक्रम, तो आप रात को 10 बजे पेश करती हैं, कौन से दिन मनचाहे गीत हुआ करते थे ना,
1: जी जी जी
0: तो बोले कि ट्रांजिस्टर लेके घूमते रहता है इधर से उधर इधर से
1: अच्छा
0: उधर। और वो वाकई में दीपक, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे कौन कौन से गाने बजा भेजा करते थे हमारे लेटर,
1: अच्छा, वो पूरा
0: कभी
1: हिसाब
0: फोन हुआ
1: किताब
0: नहीं
1: रखते
0: करते
1: थे।
0: थे जी।
1: अच्छा जी
0: तो बहुत बहुत ही मतलब मजेदार, और मेरे साथी जैसे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा है,
1: जी
0: मंडलोई जी हैं, और तेजिंदर सिंह जो अब में नहीं है, ये हम सब हम उम्र थे ना, तो इन लोग चिढ़ाया भी करते थे, कल्पना ये वाला गाना बजाना, हाय हाय ये मजबूरी,
1: जी
0: तेरी 2 टकिया की नौकरी पे मेरे लाखों का सावन जाए ना।
1: जी जी जी
0: बहुत अच्छा समय था दीपक।
1: अच्छा
0: और
1: कल्पना जी,
0: तुम्हारी
1: ये
0: हो
1: बताइए कि कर्नल यादव साहब रेडियो के शौकीन जो हैं, वो शादी के बाद बने या पहले से थे?
0: शादी के बाद, जब हमारी शादी की बात चल रही थी ना,
1: हैं
0: तो मुझे मालूम था कि मैं रेडियो में काम मतलब कैजुअल जाती हूँ, है ना, तो वो ना फिर एक बार आए रायपुर,
1: जी
0: तो वो ट्रांजिस्टर वगैरह साथ लेकर आए कि ये
1: अच्छा
0: कब बोलती है, कब क्या करती है, ये है, और फिर इनको लोग चढ़ाया भी करते थे, अरे यार तू तो फौज में जाता है ना, ड्रिल में भी ट्रांजिस्टर लेके
1: अच्छा
0: से, इस तरह से ना बहुत अच्छा समय गुजरा, बहुत
1: तो ये
0: बहुत
1: कह सकते
0: अच्छा।
1: हैं कि आकाशवाणी आपका शुक्रगुजार है कि शादी करके आपने पढ़ा दिया।
0: बहुत ही मतलब क्या कहूँ, मुझे दीपक, बहुत प्यार मिला, बहुत
1: जी
0: प्यार मिला
1: जी
0: मुझे,
1: जी
0: बहुत प्यार मिला
1: कल्पना
0: जी।
1: जी, हर

0: आकाशवाणी के कर्मचारी के जीवन में, प्रस्तुतकर्ता के जीवन में एक दिन वो भी आता है जब उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता। तो आपकी सेवा का जो आखिरी दिन था वो कौन सा था और आपको उस वक्त कैसा लग रहा था?
1: मैंने ना प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था, मेरे सर्विस के 10-12 साल थे
0: जी
1: तब, तो तब मैंने ट्रांसफर भोपाल करवा लिया था कि भोपाल में हम लोग सेटल होने वाले थे, है
0: कितने
1: ना।
0: साल रहे आप भोपाल में?
1: भोपाल में मैंने मुश्किल से 2.5-3 साल काम किया,
0: अच्छा,
1: मुश्किल से
0: तो
1: 2.5-3 साल।
0: भोपाल के बारे में भी कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ, बड़ी सुहानी यादें भोपाल से
0: अच्छा
1: भी मुझे मिली, रियली कह रही हूँ, बहुत
0: जी।
1: सुहानी। हालांकि मैंने बहुत कम काम किया लेकिन प्यार भी मुझे बहुत मिला, और उसका फाइनल फेयरवेल जो होता है
0: जी
1: मैं तुम्हें बता नहीं सकती, कि इतने में मुझे भोपाल का भी बेहद प्यार मिला, बहुत
0: जी
1: प्यार
0: जी
1: मिला।
0: जी वो कल्पना यादव जी, जिनकी आवाज वर्षों आकाशवाणी रायपुर में गूंज रही, फिर यही खूबसूरत आवाज करीब 3 सालों के लिए भोपाल चली गई। आज उम्र के इस पड़ाव में जब आप आकाशवाणी की अपनी संपूर्ण यात्रा को याद करती हैं तो कैसा लगता है आपको?
1: सच में जब तुम अभी ये बोल रहे हो ना, पूछ रहे हो मुझसे, तो यकीन मानो मेरी पोती मेरे सामने बैठी है,
0: जी
1: वो मेरी आंखों में मतलब मेरी आंखें डबडबा आई हैं। मतलब मैंने जिसने ये सोचा था कि मैं करूंगी सर्विस करूंगी तो रेडियो में ही करूंगी, नहीं तो शादी तो होनी है और वो भी ऑफिसर से ही होगी ही होगी।
0: जी जी
1: मतलब जो मैंने चाहा मुझे जिंदगी में वो सब कुछ मिला, वो
0: ऐसा
1: सब
0: ना
1: कुछ मिला मुझे।
0: जी
1: और
0: जी
1: मैं जो मेरे साथी इस दुनिया में हैं नहीं हैं उनको भी मैं बहुत याद करती हूँ, जो हमारे समय के थे, वो तो तुम जानते हो दीपक, कि
0: बिल्कुल
1: सब एक एक
0: बिल्कुल
1: करके
0: बिल्कुल
1: चले गए, जिन्होंने
0: जी
1: मुझे सब कुछ सिखाया था,
0: जी
1: जो
0: जी जी
1: बताया था,
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: जो माहौल हमने देखा है, जो एक जो अपनापन था, मुझे गंगेले जी ने बहुत कुछ सिखाया,
0: जी
1: लाल राम कुमार सिंह जी ने खूब सिखाया, मिर्जा मसूद ने अलग सब कुछ अलग अलग सिखाया,
0: बिल्कुल
1: तीनों
0: बिल्कुल
1: उद्घोषकों से मैंने कुछ न कुछ अलग अलग अलग सीखा।
0: जी। तो इन दिनों कल्पना यादव जी का जो समय है वो कैसे बीत रहा है?
1: देखो ये प्रतिभा मुझ में नहीं मालूम थी कि मुझ में है, कि
0: जी
1: मैं कुछ लिख सकती हूँ
0: जी
1: या पढ़ सकती हूँ। मुझे पढ़ने का शौक शुरू से रहा है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: तो और पढ़ना भी पड़ता था थोड़ा बहुत, तो तुम तो जानते हो स्क्रिप्ट बनानी है या ये करनी है
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: बिल्कुल
1: बहुत, है
0: जी
1: ना।
0: जी जी
1: तो और बस अब तो मेरी पोती है, पोती के साथ समय बहुत अच्छा गुजरता है
0: जी
1: और दोनों में खूब बातें भी होती हैं, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं ना उस तरह से
0: जी
1: हमारी बातें होती हैं।
0: अच्छा
1: बहू बेटा है उनके साथ बहुत अच्छा समय गुजर जाता है,
0: जी
1: फौजी क्लब है, फौजियों के साथ हमारे पुराने संबंध है कर्नल यादव के, तो बस उनके साथ बहुत अच्छा संबंध गुजर जाता है। कभी रायपुर का चक्कर लग जाता है, कभी मेरठ का चक्कर लग जाता है,
0: जी
1: और भोपाल में तो रहना ही है बच्चों के साथ।
0: बिल्कुल। तो कल्पना जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जिस खुशी आपने आकाशवाणी रायपुर की स्मृतियों को हमारे श्रोताओं साझा किया है वो खुशी सदैव आपके चेहरे पर बनी रहें, आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आकाशवाणी रायपुर को इस कार्यक्रम के लिए आपने ढेर सारी पुरानी यादों के बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, देश की वाणी आकाशवाणी की इस लंबी श्रृंखला में हमारी कोशिश यही रही है कि हम देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े प्रसारकों और कलाकारों से उनकी सुनहरी यादें ताजा करें। इस कार्यक्रम के लिए हमारे श्रोताओं का जो स्नेह और उत्साहवर्धन मिला है वो अविस्मरणीय है। इसके लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। तो अब अपने दोस्त दीपक हटवार को दीजिए नमस्कार।

0: की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ।
1: सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।
3: सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं इस अंचल के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे। पिछले 3 अंकों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कुष्ठ रोग के बारे में। आइए इस अंक में और विस्तार से जानते हैं कि कुष्ठ रोग में विकृति क्यों होती है, कब होती है, इसका इलाज कैसे हो सकता है और हमारे प्रशासन ने इस संदर्भ में क्या क्या सुविधाएं हमें दी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत।
4: धन्यवाद आकाशवाणी बिलासपुर एवं धन्यवाद सुप्रिया जी मुझे इस विषय पे अपनी बात दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। चूँकि मैं इस बीमारी को पिछले लगभग 15 वर्षों से इस समाज में देख रहा हूँ, इलाज और उसका इलाज कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि अभी भी मीन्स हम पूरे भारत देश की लगभग 1/3 ऊर्जा का बिजली जो है हम देते हैं। हमारे राज्य की बिजली से बहुत सारे राज्य रोशन होते हैं
3: जी।
4: और हमारे राज्य में हम कुछ जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये देख के मुझे बड़ा असंतोष सा होता था। आपके माध्यम से इसके बचाव के उपाय पहुँचाकर मुझे हार्दिक खुशी होगी। कुष्ठ को लेकर शासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है
3: जी।
4: शासन को ये पता है कि कुष्ठ की बीमारी से ग्रसित लोग अक्सर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में या बहुत दूर दूर जहाँ तक ट्रेन बसों की सुविधाएं नहीं होती वहाँ पे इसके मरीज अमूमन ज़्यादा रहते हैं, ये बात पता है। इस बात को ध्यान रख कर ही हमारी सरकार ने NELP नाम का कार्यक्रम बनाया हुआ है
3: जी जी।
4: और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि दूरस्थ ग्रामीण अंचल तक आपको ये दवाई मिल पाए, आसानी से मिल पाए, क्योंकि जब इस बीमारी की दवा आपको आपके घर के पास और आसानी से मिलेगी तभी आप इसका ट्रीटमेंट पूरा कर पाएंगे।
3: सही बात
4: है ना। तो क्या होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग गाँव या कई गाँव के स्तर पर होता है, उसके ऊपर हम उठते हैं तो एक होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके ऊपर होता है जिला चिकित्सालय, उसके ऊपर होता है मेडिकल कॉलेज, उसके ऊपर होता है रीजनल सेंटर। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठते हैं जो अमूमन कुष्ठ जैसी बीमारियों के लिए प्रशिक्षित होते हैं
3: जी।
4: विशेष प्रशिक्षण 15 दिन का दिया जाता है, कभी कई बार उसको रिपीट भी किया जाता है। तो और वहाँ पर आप जाके दिखा सकते हैं। और उससे भी छोटा जो हमारे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM होते हैं
3: जी,
4: शासन ये दवा का जो ब्लिस्टर पैक है उनको देकर रखती है एक रजिस्टर के साथ, और उनकी ये ड्यूटी है कि लगभग एक गांव पे एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होता है, लगभग मोटा मोटा जिसको हम लोग आशा वर्कर बोलते हैं ANM, तो जिसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने एरिए के कुष्ठ रोगी को यदि वो आने में असमर्थ है या किसी कारणवश नहीं आ पाया है तो उसके घर जाके ये जो है दवाई पहुंचाए।
3: क्या बात।
4: और अब ये सोचिए कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक ये दवाई रहती है तो आपको ये आपके घर के समीप ही मिल जाएगी। तो यदि आपको आपके पास के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल पाया तो आप CHC चले जाइए जो अमूमन 30-40 किलोमीटर के दायरे में आ ही जाता है
3: जी।
4: नहीं होता है तो जिला चिकित्सालय में चले जाइए, वहाँ पे तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये तो दवा आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती इसका मैंने बताया
3: बता दिया जी, जी।
4: और दूसरा ये कि यदि आप दवा तो आपको पास से मिल जाएगी, यदि आप सपोज दैट कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर साहब अनुपस्थित रहते हैं, किसी कारण नहीं रहते हैं, तो आप CHC या ऐसे ही जिला चिकित्सालय में जाके आप पता कर सकते हैं। इस बीमारी को जो टेस्ट होता है वो अमूमन जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में होता है। जैसे एक तो होता है बीमारी को लक्षण को देख के पहचान।

0: जी
1: और एक होता है कि जब वो बीमारी आंशिक रूप से या शुरुआती अवस्था में होती तो उस समय टेस्ट के सहारे उसको पहचानना है ना। तो टेस्ट की जो सुविधा है अमूमन हमारे छत्तीसगढ़ में या तो जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में, खासतौर से यदि हम बोलें तो सारे मेडिकल कॉलेज में स्लिट स्मियर की सुविधा उपलब्ध रहती है। कुछ जिला चिकित्सालय में है, कुछ में नहीं है, लेकिन हाँ सारे मेडिकल कॉलेज में और सारे रीजनल सेंटर्स में है। रीजनल
0: मतलब लक्षणों से आपको जांच नहीं हो पा रही है तो आप उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए कंफर्म करने के लिए मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय में करवा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं मीन्स ये चकत्ता है, मीन्स ये नहीं है, आपको बता दिया गया है, फिर भी आपका मन नहीं मानता कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, तो आप चाहेंगे कि कोई जांच से प्रूव हो जाता तो अच्छा रहता, तो इसके लिए आप मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं। स्लिट स्मियर बहुत ही सस्ता सुगम टेस्ट होता है, 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन 10 में से 6 से 7 मरीजों को ही ये पकड़ पाता है, 3 से 4 मरीजों को ये पकड़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में पंच बायोप्सी की जाती है या चमड़ी का एक टुकड़ा काट के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ये सुविधा यूजुअली जिला चिकित्सालय और रीजनल सेंटर में होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्लिट स्मियर आपका निगेटिव आ गया और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आपको कुष्ठ है तो मीन्स आप आगे पक्की जाँच के लिए आप बायोप्सी भी करवा सकते हैं। तो ये तो है कि दवाई आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ऊपर तक सब जगह मिलेगी, जांच जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज या रीजनल सेंटर में आपकी जांच हो जाएगी। अब आते हैं डिफॉर्मिटी पे। इस बीमारी
0: अलग अलग स्तर पर ये बीमारी है, जैसा कि आपने बताया कि विकृति के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे, तो किस स्थिति में ये तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती हैं?
1: यदि हमने कुष्ठ का ट्रीटमेंट लेट चालू किया है तब हमारे शरीर में विकृति आने लगती है। ये विकृति क्या होती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉ हैंड, मतलब कि हाथ और पैर की उंगलियां मुड़ने लगती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा हमने शुरू में बताया था कि ये कीटाणु, कुष्ठ का कीटाणु नसों में घर बनाता है और घर बना के नस को दबाता है। अब वो नस को दबाएगा तो नस अपना काम नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो है इस तरह की विकृतियां आती हैं। कई बार तो कुष्ठ को हम विकृति देखकर पहचान लेते हैं
0: जी,
1: है ना, आप कि सारी उंगलियां सीधी हो रही हैं, पंख जैसे उंगलियों को फैलाएं और फिर सिकोड़ें, क्या ये आप कर पा रहे हैं, पूरी उंगलियों को सीधा कर पा रहे हैं? शुरुआती अवस्था में आप देखें यदि किस तरह का आपको शक हो तो, और यदि किसी भी प्रकार की विकृति आप में नजर आती है तो आप पास के चिकित्सक से मिलें, और जब तक नहीं मिलते हैं हाथों की तेल से मालिश करें, हाथ को रख लें टेबल पे और नारियल तेल या सरसों तेल से उसकी मालिश करें, इससे आप विकृति को रोक सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक हुआ कि आप मालिश कीजिए। विकृति के लिए सर्जरीज होती है जो अमूमन रीजनल सेंटर में होती है। छत्तीसगढ़ का रीजनल सेंटर शासकीय क्षेत्र में रायपुर, लालपुर, धमतरी रोड पे लालपुर गांव है, वहां पे है
0: जी।
1: तो रीजनल लेप्रोसी सेंटर है, वहां पे सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, वहां पे आपका रहना, खाना, सर्जरी और इलाज के पैसे, आने जाने के पैसे भी आपको सरकार ही देती है। यहाँ तक कि विशेष परिस्थितियों में कुष्ठ के मरीजों को रहने के लिए फ्री में घर और एक छोटा रोजगार भी दिया जाता है ताकि वो रहें, क्योंकि इसका इलाज साल भर 2 साल चलता है, तो वहाँ रहें और रह के छोटा मोटा काम करें और अपने फैमिली का निर्वहन कर सकें। तो रीजनल जो लेवल होता है वो कई राज्यों के स्तर पर एक होता है अमूमन, जैसे हमारा जो लालपुर है,
0: छत्तीसगढ़ का लालपुर में,
1: छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ भाग महाराष्ट्र का लिए हुए लालपुर है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो यहाँ पे आसपास के राज्यों के मध्य प्रदेश से भी मरीज आते हैं, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन की भी सुविधा होती है।
0: देखिए कितनी अच्छी बात हमारे श्रोताओं को आज पता चल रही है आपके माध्यम से, कि एक तो इलाज पहले कराना है समय रहते ही, जैसे ही लक्षण आए जो आपने शुरू से अब तक बताए, और यदि इलाज के दौरान ये पता चल जाता है कुष्ठ है तब तो आप इलाज से ही ठीक हो जाएंगे दवाइयों से, लेकिन देर हो चुकी है फिर भी डिफॉर्मिटी शुरू हो रही है आपको दिख रहा है तब भी विलम्ब नहीं हुआ है। देखिए वो आपने इस जगह का भी नाम बताया जहां जाकर हमारे इस डिफॉर्मिटी को ठीक भी किया जा सकता। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:41 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

साहिर लुधियानवी का लिखा गीत आपने सुना खय्याम के संगीत निर्देशन में। त्रिशूल फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और यशुदास ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कम ब्याज पे

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पेंटर बाबू फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में। रचना थी कतिल सिफाई की और संगीत तैयार किया था उत्तम जगदीश ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध है फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने सुनने वालों को याद दिलाना चाहेंगे, शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा वंचितों को वरीयता। आज रात 8 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी। आकाशवाणी के पूर्व सहायक ग्रंथालय एवं सूचना अधिकारी श्री विशोक कुमार पांडे से बातचीत, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी, भेंटकर्ता और प्रस्तुति सहयोग सुनील चिपड़े। शाम 5:05 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रमबेरा के गुट में चर्चा का विषय स्वस्थ अन्न के उत्पादन करबून। साथ ही सुनेगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सदाबहार नगर।

0: तिलक राज थापर का लिखा गीत आपने सुना राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में। तराना फिल्म के इस गीत को गाया था शैलेंद्र सिंह ने। और इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने

0: कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक

0: स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत

0: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग द इंटरनेशनल

कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है श्रोताओं। आपके पत्रों और आपकी पसंद के गीतों को लेकर आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन का गाया हुआ। और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है पौड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, एनी बबली, सुमन, मंटू, मिष्ठी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू ने। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से है। मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमा

सुधांशु और अंकित देवांगन, शांति नगर भाटापारा से हैं मिलाऊ दास कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास, बिरजा, संजना और लक्की, ग्राम दरचूरा से हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी और प्रीतम कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव।

0: कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन का गाया गीत आपने सुना माटी के स्वर कार्यक्रम के आरंभ में।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26

0: 20 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, कुमारी आंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार कंवर। शांति नगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी, कुमारी आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी, जिला राजनांदगांव से हैं नारायण लाल साहू कान्हापुरिया, कुलवंतीन देवी, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, बिल्लिंद कुमार, प्रणय कुमार, द्रुद्रांश प्रताप साहू। हथनी पारा भाटापारा से हैं दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। ग्राम रसेड़ा कल्तरा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। लूत्रा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज। आप सभी ने सुनना चाहा है कांति यादव और गीता भट्ट का गाया ये गीत।

0: छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, सुबह 10 बजे आओ बच्चों कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सामयिक चर्चा का विषय होगा अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी सुरक्षित भोजन। साथ ही चर्चा सुनिएगा महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े प्राकृतिक खजाने। इसके अलावा आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम नवीन कला निकेतन पुराना बस स्टैंड बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति। हम अपने सुनने वालों को ये भी याद दिला दें, कार्यक्रम विवरण आज आप सुनेंगे शाम 6:05 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। रायपुर केंद्र से ही शाम 6:30 पर रिले करेंगे कानून की बात संपत्ति विवाद के संबंध में श्री आशुतोष द्विवेदी अधिवक्ता जगदलपुर से की गई बातचीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स की

0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। दगोरी उड़नताल से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, पल्लवी और समीर गायकवाड़। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत प्रिगु, विनय ठाकुर, चोआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से हैं सियाराम और अश्विनी पांडे। सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनीशा। रायपुर से हैं नीलू मेघ। आप सभी ने सुनना चाहा है खुशी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन का गाया गीत।

खुर्शी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन का गाया गीत आपने सुना। अब आइए सुनते हैं ध्रुआ रामरकाम और दुखिया बाई का गाया गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम नूतन साहू, अलका जानवी, गौरव साहू, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन सुमन मिथिलेश तारनी सुजला सूरज ज्योति और रेयांश ठाकुर, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, हाव्या रजक और तानिया रजक, नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणि, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत सौर्य, कुमारी सानवी और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं फुलसर भाया कटगोरा, चिरमिरी रोड, जिला कोरबा से।

जंगल झाड़ी झाड़ी खोजू समरिया दुख दुख मां बीता।

दुखिया बाई का गाया गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है माटी के स्वर कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी बिलासपुर, पिन है 4950006। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं समाप्त होता है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 9 बजकर 55 मिनट तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज, फिल्म राज 3।

को आपने सुना फिल्म थी राज थ्री। श्रोताओ, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है। उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोस में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म आपके बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बंधी।

आपके भरोसे फिल्म का गीत आपने सुना शान और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

जैस्मिन सेंडलास और सतेंद्र सरताज की ये आवाज़ें आपने सुनी। सतेंद्र सरताज और जैस्मिन का लिखा ये नगमा था, शाश्वत सचदेव का संगीत था, धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओं, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक महत्व को उजागर किया जा सके। खेतों से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के बीज का की जो प्रक्रिया है वो बेहद सुरक्षित रहे, दूषित भोजन खाने से बचें जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इससे कुपोषण और गंभीर पेट की बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। असुरक्षित भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं। खाना पकाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, भोजन को उचित तापमान पर संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा केवल हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ भारत में जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI जैसी संस्थाएं काम करती हैं। सुरक्षित भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, बीमारियों से हम दूर रहें। न सिर्फ स्वास्थ्य हमें जीवन प्रदान करता है, बल्कि एक कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी भी बहुत कुछ महफूज रहती है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें।

0: अरमान मलिक की आवाज थी, साथ ही नीति मोहन को भी आपने सुना। रश्मि विराग के बोल थे, अमाल मलिक का संगीत था, हेट स्टोरी 3 फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रलोक से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
0: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था, इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू पर ज्यादा बात करें।

0: मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

0: रहे।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली।

के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से, और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: हालात बदलते।
1: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
2: मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर ये ज्यादा फैल गए तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। जिसमें दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
3: जी, जी, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई, मिल गया, मिल गया, सालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

0: ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहाँ हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जूहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जा करके सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने, उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई, और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए, और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे, और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है। वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
1: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
2: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवाय रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बंबई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
1: धंधा यानी कि काम ना है? काम क्यों भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
2: जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए।
1: नहीं काम बताओ, मुझे काम बताओ।
2: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
1: ये पास सच कह, ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो।
2: ईमानदार हो?
1: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो।
2: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
1: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कुछ करा के देख ले।
2: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
1: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
2: ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
1: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

0: लिया
1: कोई ना,
0: देखी मैं कुफर तो लिया
1: कोई ना,
0: देखी मैं जहर को लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के पलागी बच के
2: के ए अब्बास ने राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हेना फिल्में लिखी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। इस समय 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी और घरेलू गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर संभाग की समीक्षा बैठक में कहा है कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए और इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। मुख्यमंत्री ने नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 7 करोड़ रूपये की लागत से तेल नदी पर एनिकट निर्माण की स्वीकृति दी गई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 900 से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही है। श्रीमती गौर भाजपा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के तहत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित है। स्वीकृत

0: पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। CBSE ने बताया कि आज छात्र मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, कोप्पल, अनंतपुरम, चेन्नई है। एक सीजनल द्रोणिका सूरतगढ़, रोहतक, रीवा, रांची, कैनिंग और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के आसपास एक ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके असर से आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक, अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का साहस, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी सदस्य नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए की टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। और कोरबा जिले में और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग के विशेष उड़न दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के 15 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त 14 वाहन और मशीनें जब्त की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आओ बच्चों। प्रस्तुति लिंटा मनोज की है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: मैं हूं आपकी दीदी लिंटा और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम आओ बच्चों में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश हैं। एक बार की बात है बच्चों, दो दोस्त थे जिसमें एक बच्चा हमेशा हाथों को धोने के बाद अच्छी आदतों के साथ साफ भोजन करता था, जबकि दूसरा बच्चा बिना हाथ धोए कुछ भी चीजें खा लेता था। कुछ दिनों के बाद जो दूसरा बच्चा था वो बीमार पड़ गया बच्चों। उसे अक्सर थकान महसूस होती थी और किसी काम में भी उसका मन नहीं लगता था। वहीं पहला बच्चा हमेशा स्वस्थ और एक्टिव रहता था। बाद में बच्चों उस छोटे बच्चे को ये बात समझ आई कि स्वाद से भी ज्यादा जरूरी है भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा। इस तरह से बच्चों ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी केवल भोजन लेना नहीं है, लेकिन सुरक्षित और स्वच्छ भोजन खाना भी है। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को फैलाने के उद्देश्य से बच्चों हर साल आज के दिन यानी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बच्चों जो भी भोजन हम खाते हैं वो केवल हमारा पेट ही नहीं भरता, लेकिन हमें ताकत, ऊर्जा और अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। और भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि वो साफ और सुरक्षित नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बच्चों गंदे हाथों से खाना खाना, बिना धोए फल और सब्जियों का उपयोग करना और बाजार में खुली जगहों पर रखे खाद्य पदार्थों का सेवन करना भी आपको बीमार कर सकता है बच्चों। और बच्चों भोजन से जुड़ी कई समस्याओं और बीमारियों से केवल

कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे भोजन करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोना। इसी प्रकार फलों और सब्जियों को भी उपयोग में लाने से पहले अच्छे से धोना, हमेशा ताजा और स्वच्छ भोजन करना। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि आप जो भी खाने पीने की चीजें बाजार से मंगवाते हैं उनमें उस खाद्य पदार्थ की जानकारियों के साथ एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखे होते हैं, जिन्हें देखना कई बार हम भूल जाते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में जरूर रखें बच्चों कि जो चीजें आप उपयोग में ला रहे हैं उन्हें कितने दिनों के अंदर आपको यूज कर लेना है। और इन बातों को यदि हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो वही कारण होता है बच्चों कि हम बीमार पड़ जाते हैं। इनके अलावा खुली जगहों पर बिकने वाले जो कटे हुए फल और अस्वच्छ खाद्य पदार्थ हैं उन्हें भी खाने से बचें। मम्मी पापा के बताए अनुसार ही खाने पीने की चीजों को आप प्रयोग करें। स्वस्थ शरीर ही बच्चों आपको अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। जब आप सुरक्षित भोजन खाते हैं तो आपका शरीर मजबूत बनता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आप पढ़ाई और खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए बच्चों पौष्टिक और संतुलित आहार को अपने भोजन में जरूर शामिल करें। हाँ, एक और बात बच्चों, भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के साथ साथ भोजन का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। खाने के प्लेट या थाली में उतना ही भोजन आप लें जितनी की आपको जरूरत है। खाने पीने की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए बच्चों। इस तरह से हमेशा स्वच्छ और पौष्टिक भोजन खाएं, खाने से पहले हाथों को धोएं, भोजन की बर्बादी नहीं करें। और इन अच्छी आदतों के बारे में आप अपने परिवारजनों और मित्रों को भी प्रेरित करें। और हमेशा आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें, हमारी यही कामना है। चलिए, बातों का सिलसिला हम आपके साथ आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं बच्चों नवीन कला निकेतन पुराना बस स्टैंड बिलासपुर के नन्हे दोस्त, जो कि अपनी बातों और मनमोहक प्रस्तुतियों से हम सभी का मनोरंजन करेंगे। आइए जुड़ते हैं हम इनसे।
1: संस्थापक हूँ। मैंने बचपन से संगीत में अपनी रुचि अपना रुझान पाया, इसलिए मैं पूर्णतः इस फील्ड के लिए समर्पित हो गया और उसमें जो अच्छाइयाँ मुझे दिखी है उसके अनुसार मैं इस लाइन में सदा सतत कार्यरत रहना चाहता हूँ। मैं बांसुरी का बहुत प्रेमी हूँ, बांसुरी बजाता हूँ और बच्चों को बांसुरी सिखाने का कार्य सही रूप से कर रहा हूँ। म्यूजिक में मैंने पाया कि संगीत हमारे लिए चिकित्सा का काम भी करते ही, इस बात की जानकारी होने के बाद मेरी रुचि और भी कई गुना बढ़ गई। अपनी व्यस्तता के बाद भी मैं अपने इस फील्ड के लिए समय निकाल ही लेता हूँ। वर्तमान में मैं अपने संगीत क्लास में बच्चों को बांसुरी, बैंजो, ढोलक, कैसियो सिखाने के साथ साथ नाट्य कला के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए अभिनय भी सिखाया करता हूँ और वर्तमान में मैं आदर्श कला मंदिर नाट्य संस्था का डायरेक्टर नियुक्त हुआ। आदर्श कला मंदिर विगत 50 वर्ष बिलासपुर शहर में कंप्लीट कर चुका है। अनेकों प्रकार के ज्ञानवर्धक नाट्य के माध्यम से अच्छे संदेशों का प्रसारण करता रहता है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। यदि कुछ पाने का जुनून दिल में पालोगे तो निश्चित ही सफलता से मुलाकात होती है। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
0: बच्चों हमारे साथ हैं प्यारे से नन्हे से सौभाग्य मुखर्जी। सौभाग्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: दीदी मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, इस बार की गर्मी की छुट्टियों में सौभाग्य आप क्या कर रहे हैं?
2: दीदी इस बार तो मुझे बहुत मजा आया, मैं मम्मी के साथ नानी के यहाँ घूमने गया था।
0: नानी कहाँ रहती हैं सौभाग्य?
2: कलकत्ता में।
0: अच्छा, वहाँ की खास बात आपको क्या लगती है?
2: वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी जाता हूँ हावड़ा ब्रिज जरूर घूमता हूँ।
0: वाह, आपने बोला आपको वहाँ की खाने की चीजें बहुत पसंद है, आप क्या पसंद करते हैं खाने में?
2: वहाँ का रसगुल्ला और गुलाब जामुन बहुत पसंद है दीदी।
0: और आप हमें पसंद हो सौभाग्य। अच्छा ये बताइए कि आप आज क्या सुना रहे हैं?
2: दीदी मैं आज दोस्तों को कविता सुनाऊंगा, छोटी सी।
0: सुनाइए।
2: दोस्तों कविता का नाम है तिरंगे का कर्ज। लाल रक्त से धरा नहाई, शेत नव पर लालिमा छाई, आजादी के नव अध्यक्ष पे सबने वीरों की गाथा गई। गांधी नेहरू पटेल सुभाष की ध्वनि चारों ओर से छाई, भगत राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी से आंखें भर आई। हे भारत माता तुझसे अनोखी और अद्भुत माना हमने पाई, हमारे रंगों में तेरे कर्ज की एक एक बूंद समाई, माथे पर है बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई, सरहद पर खड़े रहकर आजादी की रीत निभाई। थैंक यू।
0: तिरंगे का कर्ज, ये प्यारी सी कविता अभी हमने सुनी सौभाग्य से। और आइए बच्चों अब हम बातें करते हैं अक्षित अग्रवाल से। अक्षित आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं?
3: दीदी मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ।
0: अक्षित आपकी हॉबी क्या है?
3: दीदी मेरी हॉबी है बांसुरी बजाना।
0: वाह, आप बांसुरी बजाना सीख रहे हैं?
3: हाँ दीदी, नवीन सर मेरे गुरु हैं और मैं नवीन कला निकेतन में बांसुरी बजाना सीख रहा हूँ।
0: अच्छा, कितने समय से आप बांसुरी बजाना सीख रहे हैं?
3: दीदी मैंने

0: ज्वाइन किया है, मुझे अभी एक ही महीना हुआ है।
1: बांसुरी में सबसे खास बात आपको क्या लगती है, क्यों आपको बांसुरी बजाना अच्छा लगता है?
0: दीदी, जब भी मैं किसी को टीवी पर या फिर रेडियो पर बांसुरी बजाते हुए सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मुझे बांसुरी बजाना पसंद है।
1: वाह अक्षित, हम तो यही चाहेंगे कि आप बांसुरी बजाना सीखिए और जीवन में आगे भी आप बढ़िए। फिलहाल अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आप हमारे नन्हे दोस्तों को क्या सुना रहे हैं?
0: दीदी, मैं हमारे दोस्तों को आज कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है माँ की स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आर्यन 12 साल का एक होशियार लड़का था जिसे मोबाइल और वीडियो गेम बहुत पसंद था। स्कूल से आते ही वो बैग एक कोने में रख देता और घंटों फोन पे गेम खेलता रहता था। उसकी माँ नेहा उसे कई बार समझाती थी, बेटा थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दो, लेकिन दोस्तों आर्यन हर बार ये कह देता, माँ बस 5 मिनट और वही 5 मिनट दोस्तों कब घंटों में बदल जाता उसे पता ही नहीं चलता। एक दिन स्कूल में आर्यन का टेस्ट हुआ दोस्तों, लेकिन उसका पेपर अच्छा नहीं गया और जब रिजल्ट आया तो उसे कम नंबर मिले तो वो बहुत उदास हुआ। माँ ने उस प्यार से उससे पूछा, क्या हुआ आर्यन, आप चुपचाप क्यों हो? तब आर्यन ने दोस्तों अपना रिपोर्ट कार्ड माँ को दिखाया। दोस्तों, माँ ने डांटने की बजाय मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सुधार करेंगे। उसी दिन से दोस्तों माँ ने एक नया तरीका अपनाया, उन्होंने आर्यन के लिए घर में ही स्मार्ट क्लास शुरू कर दी। जब रोज शाम को आर्यन और उनकी माँ साथ बैठते बहुत अच्छा लगता। माँ पढ़ाई को खेल की तरह बनाती, कभी क्विज, कभी पजल तो कभी छोटी छोटी कहानियाँ। गणित के सवाल चॉकलेट्स के साल हल होते और अंग्रेजी के शब्द गेम बन जाते दोस्तों। इस प्रकार से आर्यन को पढ़ाई मजेदार लगने लगी। धीरे धीरे उसने मोबाइल का समय कम कर दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगा। कुछ महीने बाद दोस्तों फिर से टेस्ट हुए और इस बार आर्यन ने अच्छे नंबर लाए और वो खुशी खुशी घर आया, माँ को गले लगा कर बोला, मम्मी आपकी स्मार्ट क्लास तो बेस्ट है। माँ ने हंसते हुए बोला, असल में स्मार्ट तो तुम हो बेटा, मैंने तो तुम्हें बस रास्ता दिखाया। दोस्तों, उस दिन आर्यन को समझ आया, माँ सिर्फ डांटती ही नहीं है लेकिन सही रास्ता भी दिखाती है, हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका भी देती है और अच्छा काम करने पर शाबाशी भी देती है। और इस तरह से आर्यन ने अपने आप से वादा लिया कि वह पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाए रखेगा। थैंक यू दोस्तों।
1: वाकई बच्चों, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जब मम्मी आपके साथ होती है और मम्मी का साथ होता है तब आप सभी की हिम्मत बढ़ जाती है। और आप भी जरूर जब भी किसी प्रकार की परेशानी में हो तो मम्मी पापा से बात करके उनसे मदद जरूर लीजिएगा। फिलहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं नितेश साहू से। नितेश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: दीदी, अभी अभी मैंने 10वीं का परीक्षा पास की है।
1: किस सब्जेक्ट के साथ अब आप अपने आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे नितेश?
2: दीदी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गणित के साथ अपना आगे का क्लास स्टार्ट करूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। फिलहाल गर्मी की छुट्टियाँ आप किस प्रकार से मना रहे हैं?
2: गर्मियों की छुट्टी लगभग खत्म होने को है और इसमें मैंने खेल कूद बांसुरी सीख कर अपना, मतलब ये मेरा चॉइस है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ।
1: आपने कहा आपको खेल भी पसंद है, तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है नितेश?
2: पसंदीदा गेम क्रिकेट है, व्यायाम भी करता हूँ डेली।
1: क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है?
2: विराट कोहली।
1: यानी कि अभी जो IPL गेम्स हुए उसमें आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ थे आप?
2: जी दीदी।
1: इस बार IPL की विनिंग टीम आप जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही बनी है, तो आपको तो बहुत खुशी हुई होगी।
2: जी दीदी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार भी RCB चैंपियन बनी और पिछले साल भी वह चैंपियन रही, तो हमने दोस्तों के साथ मिलकर इस मैच को खूब एंजॉय किया।
1: बिल्कुल नितेश, आप ही ने नहीं, मुझे लगता है कि हमारे सारे जो बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड होके, ये हो सकता है कि अलग अलग टीम को उन्होंने फॉलो किया हो। ये एक अच्छी बात रही कि पिछले 2-3 महीनों से सबने अपने घर में क्रिकेट का लुत्फ उठाया।
2: जी दीदी बिल्कुल।
1: और ये बताएं नितेश कि आप आज हमें क्या सुना रहे हैं?
2: जैसा कि दीदी मैंने आपको बताया कि मुझे बांसुरी बजाना अभी स्टार्ट किया हूँ, तो अभी मुझे उसी में रुचि आ रही है।
1: तो आप कब से सीख रहे हैं?
2: पिछले 2 महीने से सीख रहा हूँ।
1: कैसा लग रहा है बांसुरी बजाना सीखकर आपको?
2: दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है और एकाग्रता भी मेरी इम्प्रूव हुई, जिससे पढ़ाई में भी मन लग रहा है अच्छा से।
1: अच्छा, और आप क्या सुना रहे हैं नितेश?
2: दीदी मैं अपने दोस्तों को बांसुरी से जुड़ी चीजें बताने चाहूंगा।
1: बताइए नितेश।
2: दोस्तों, बांसुरी सीखने का मेरा मन था पहले से ही और इसके सीखने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि संगीत के सभी वाद्य यंत्रों में बांसुरी मुझे अधिक मनमोहक लगती है। इसकी मधुर ध्वनि मन को शांत

0: और आनंद से भर देती है। विद्यार्थी जीवन में आज सोशल मीडिया प्रतिस्पर्धा और अन्य अनेक कारणों से ध्यान भटकता है तथा तनाव उत्पन्न होता है, जिससे पढ़ाई और जीवन के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में बांसुरी का अभ्यास मन को नकारात्मक विचारों से दूर कर सकारात्मकता प्रदान करता है। यह मन को एकाग्र करने में सहायता करता है, जिसका लाभ अध्ययन और दैनिक जीवन दोनों में मिलता है। मेरा मानना है कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का माध्यम भी है। दोस्तों, कला के द्वारा व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, संयम और शांति के साथ करना सीखता है। संगीत के नियमित अभ्यास में मन और शरीर के अनेक विकारों को दूर करने की शक्ति होती है। विशेष रूप से बांसुरी वादन में श्वास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अभ्यास से श्वास को नियंत्रित करने और शांति, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में लाभ होता है। दोस्तों, हमारे संतों और महापुरुषों ने भी संगीत और कला को ईश्वर तक पहुंचाने का सरल और प्रभावी मार्ग माना है। संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसलिए मैं बांसुरी सीखने को केवल एक कला नहीं, बल्कि आत्म विकास और आत्मिक साधना का माध्यम मानता हूँ। धन्यवाद मित्रों।
1: वाकई नितेश, बांसुरी बजाना सिर्फ एक कला नहीं है, लेकिन हमारे मन को और हमारी आत्मा को ये शांति और सुकून भी प्रदान करता है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ अब हम जुड़ते हैं अभिषेक सिंह से। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मी की जो छुट्टियां हैं, उसमें आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रह रही है?
2: दीदी, गर्मी की छुट्टियां चल रही है
1: जी,
2: और इस वक्त घर पे ज्यादा समय बीतता है, जिसमें मम्मी पापा दादी दादा के साथ काफी अच्छा समय बीत रहा है, जो कि स्कूलों के समय में संभव नहीं हो पाता है।
1: बिल्कुल,
2: स्कूल के समय में सुबह हम स्कूल चले जाते हैं और कुछ नई चीजें नहीं कर पाते। तो अभी गर्मी की छुट्टियों पे मैं मेरे घर के पास में नवीन कला निकेतन में बांसुरी सीख रहा हूँ,
1: जो कि आपकी हॉबी है
2: जी। इसे अब हॉबी मान लीजिए या फैशन मान लीजिए, मेरा मुझे अच्छा लगता है।
1: अच्छा।
2: बांसुरी से जुड़कर
1: जी। तो कोई धुन वगैरह आपने सीखा?
2: जी दीदी, अभी कुछ जो मुझे संगीत पसंद है उनके धुन सीख रहा हूँ।
1: अच्छा, और ये बताएं अभिषेक, आप हमारे नन्हे दोस्तों को आज क्या सुना रहे हैं?
3: जी दीदी, मैं विश्व महासागर दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व के बारे में जागरूक करना और उनका संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। महासागर पृथ्वी का लगभग 71% भाग ढकते हैं और हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं, लाखों जीवों का घर है तथा करोड़ों लोगों की आजीविका का स्रोत है। यदि महासागर स्वच्छ रहेंगे तो हमारा जीवन और मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज महासागर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंचता है, समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि इस दिन के उपदेश को महासागरों के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें समुद्रों की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। भले ही दोस्तों हम समुद्र के पास ना रहते हों, फिर भी हम महासागरों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करें और प्लास्टिक कचरा इधर उधर ना फेंकें। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालें, क्योंकि नदियों और नालों के माध्यम से कचरा समुद्र तक पहुंच जाता है। पानी की बचत करें, क्योंकि स्वच्छ जल संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण के लिए आवश्यक है। पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, इससे पर्यावरण संतुलित रहता है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी जानकारी अभिषेक ने हमें दी बच्चों, और आइए कुछ रोचक जानकारी अब महासागरों के ऊपर हम भी आपको देते हैं। बच्चों, जैसे कि कुछ देर पहले अभिषेक ने हमें बताया कि हमारे पृथ्वी का लगभग 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। बच्चों, दुनिया में 5 प्रमुख महासागर हैं, जो कि आप जानते भी हैं। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। बच्चों, पृथ्वी पर मौजूद लगभग 97% पानी महासागरों में है बच्चों, लेकिन खारा होने के कारण सीधे इसे हम पी नहीं सकते हैं। और यही नहीं, महासागर पृथ्वी का लगभग 50% से अधिक ऑक्सीजन

0: जन के उत्पादन में भी योगदान देते हैं। ये कार्य बच्चों समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म पौधे करते हैं। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये आप सभी जानते भी होंगे। ये महासागर इतना बड़ा है कि इसमें सभी महाद्वीप समा सकते हैं। बच्चों, महासागर में रहने वाले जीवों की लाखों प्रजातियां हैं, जिनमें से कई जीवों की खोज अभी भी जारी है। बच्चों, और बच्चों, महासागर की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं बच्चों कि हमने अंतरिक्ष की तुलना में महासागरों की गहराई को कम खोजा है। बच्चों, महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे जलवायु को नियंत्रित भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी भी आप सभी ने जरूर पसंद की होगी। आइए बच्चों, बात करते हैं महाराज्य विश्वास से। महाराज्य, हमने सुना है कि आपको बांसुरी बजाना अच्छा लगता है और आप बहुत सुंदर बांसुरी भी बजाते हैं। कितने सालों से आप बांसुरी बजाना सीख रहे हैं महाराज्य?
1: दीदी, मैं गतः 2 से 3 वर्ष से बांसुरी बजाना सीख रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: और इस समय को बहुत आनंद आता है।
0: बांसुरी में आपकी रुचि कैसे बनी?
1: दीदी, मैं बचपन में पहले गाना सीखता था, जिसमें मेरे को ज्यादा रुचि आई नहीं। उसके बाद मेरे को मेरे स्कूल में एक भैया मिले जो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे।
0: अच्छा।
1: उन्होंने मेरे को प्रेरित किया बांसुरी बजाने के लिए और उसी के बाद से मैं बांसुरी बजाना सीखना चालू किया नवीन कला निकेतन में।
0: अच्छा, अभी वर्तमान में आपके गुरु कौन है?
1: अभी मेरे गुरु नवीन सोनी सर ही है, उन्हीं के अंदर मैं सीख रहा हूँ।
0: अच्छा, और बांसुरी में आपको कौन सी धुन अच्छी लगती है?
1: बांसुरी में तो कई प्रकार की धुन होती है। अब बहुत भजन के ऐसे धुन भी होते हैं, मैंने बहुत महाभारत के ऐसे धुन भी बजाया, लेकिन क्लासिकल में हम ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि बांसुरी जो है वो सरगम से ही आप अनेक प्रकार का धुन अपने से ही बना सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और बना के उनका बजा भी सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसलिए हम कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हमको यही धुन बजाना है तो हमको इसी रास्ते में चलना पड़ेगा, ऐसे ही बांसुरी बजानी पड़ेगी। बांसुरी एक ऐसी कला है बांसुरी कि जिसे हम अपने मर्जी से अपने मन की इच्छा से बजा सकते हैं।
0: अच्छा, और आपने कहा कि आपको महाभारत की धुन भी बजानी आती है, नवीन सर से आप शिक्षा ले रहे हैं, तो कुछ हम चाहेंगे कि आप हमारे नन्हे दोस्तों को भी सुनाएं।
1: जी हाँ, तो मेरे नन्हे दोस्तों, मैं आपको शुरुआत में पहले महाभारत की धुन बजा के सुनाऊंगा।

0: बहुत ही सुंदर महाराग्य, हमारे दिल को शांति और सुकून मिला ये सुनकर आपने जो अभी बांसुरी की धुन हमें सुनाई। और महाराग्य, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए पहाड़ों की धुन पर आधारित कोई धुन अगर आप हमारे बच्चों को सुना सके तो।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी छत्तीसगढ़ी धुन बजा के सुनाऊंगा आप लोगों को, जो सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है।

और आइए बच्चों, अब चलते चलते महाराग्य से हम सभी सुनते हैं सारे जहां से अच्छा इस गीत पर एक प्यारी सी बात।

0: वाह, बहुत सुंदर महाराज्य, आपने अपनी बांसुरी की मधुर धुनों से हम सभी को और हमारे सुनने वाले बच्चों को भी मुझे लगता है मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों, आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे इतनी प्यारी बातें की, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: बच्चों, आशा करते हैं कि हमारे इन नन्हे बच्चों की प्रस्तुति और आज का कार्यक्रम आप सभी ने जरूर पसंद किया होगा। आप सभी हमें पत्रों के द्वारा बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। पत्र आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम चिट्ठी मिली, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। पिन नंबर है 495006। आप हमें पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों, अब धीरे धीरे समय भी कार्यक्रम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो दीजिए अनुमति आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद,
2: जय हिंद।

कार्यक्रम आओ बच्चों का प्रसारण अभी किया जा रहा था। प्रस्तुति लिंटा मनोज की थी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नए तराने।

लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना भी आपने सुना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन तैयार की थी प्रीतम ने।

0: इश्क ने क्रेजी किया रे। इस फिल्म का गाना भी आपने सुना पलक मुच्छल और श्री रामाचंद्र की आवाज़ों में। गीत लिखा था आतिया सईद ने और धुन तैयार की थी अल्ताफ सईद ने। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जिले में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 24 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदाकदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इससे असहज होते हैं।

0: पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार, किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हों, ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सके। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है, अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर न रखें, ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चले। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। अपने वाहन चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। मालवाहक वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड न करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है, अतः नशा से दूर रहें। नशा कर वाहन चलाने की गलती कभी न करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, नए तराने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आतिफ असलम का गाया गीत आपने सुना फिल्म रुस्तम से। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने, धुन तैयार की थी आरको ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओ, संदेश से पहले आपने सुना लैला मजनू फिल्म का गाना, ज्योतिका टंगरी और आतिफ असलम की आवाजों में। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और धुन तैयार की थी जॉय बरुआ ने। आइए सुनिए नए तराने कार्यक्रम का अगला तराना।

मर जावा फिल्म का गाना भी आपने सुना नेहा कक्कर और यश नार्वेकर की आवाज़ों में। गीत लिखा था एम तुराज और इंदिवर ने, संगीत तैयार किया था तनिष्क बागची और कल्याण जी आनंद जी ने। और इसी के साथ नए तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय ठीक 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: संगीतकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष यादव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी।

0: प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोक गीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे, तो आइए लोक रंग की इस सुरमई शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, छमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया ना कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना, सातारकर, कबीरांची दीन, माए अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहां बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली हैं, तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं। और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
2: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारी मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांवों की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते।

0: तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं, तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
1: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करें, अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावे ले लें। आज ने याद किया है अपने लोक रंग सृजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है मुझे गढ़ने में। हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यह भोग में सुरस्वती कहीं लगा, तब सुनावत है आप सबके
0: सुरस्वती मैया की जय।
1: हाँ।

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ, बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ सुनाई गाती हूँ इतना।

0: सुंदर अंदाज में आपने पेश किया, तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है। इस
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं

0: के जो लगाव हैं सुरों के वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
1: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
0: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली जी, महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनके घर के लड़के से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माँ ही कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्त के घर में। हाँ, तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई यही नहीं बतावा, यहाँ देखा था सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा, तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुई ठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें तो देखिए वो कैसे चल रही है।

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
1: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिलकुल
1: है क्या ना, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सैम

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले ही इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खास तौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी, क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला सची मैथिली भाषा है, सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेल है। हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शिशाई। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब। तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं भैरव, ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी, ए जटिन

जट्टा को आवाज सुनाई दी। उसने वहीं से कहा, एलियो गे जट्टिन, एलियो गे, एलियो गे जट्टिन, एलियो आयब गेलियो गे जट्टिन, आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभाजी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभाजी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम का है, तो जवाब आएगा तुम्हें का करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक है। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम पहले सभी जनन को, नरमदेह हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है, ऐसा ये है बम्बुलिया और लमटेरा। लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छे जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो एक साथ निकला करते थे वो लोग, और एक बंदा कहीं बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है, उसमें देवी महिमा खासकर नर्मदा जी इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू।
1: वाह वाह क्या बात है। नरोत्तम जी बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं, अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर, आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बर्फ़ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है, लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है, भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं। तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं। ममता, हम आप गाएं इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ की आप रहने वाली हैं वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं, महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के जो?
2: नहीं, वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत निडर महिलाएं होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहलाद, मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है, एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
1: तो वो गा के सुनाइए।

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोहलियो रे, इस गाने पर सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया दो कनिया, पनवा के सब रस ले लियो रे।

0: दुकानिया उड़ उड़ बैठी बजा जिया दुकानिया उड़नी के सबरा सलेली जड़े वाली मुनिया है उड़नी के सबरा सलेली और पिंजड़े वाली मुनिया। थैंक यू विविध भारती,
1: धन्यवाद।
0: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया, मुझे तौफीक भाई की याद आ गई, एक जोरदार तालियां।
2: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
1: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंग की शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी

0: आभार व्यक्त करता है इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवा शेट्टी जी के प्रति। हरीश छेड़ा साहब, अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बेलदार जी साहब, हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 11:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे और समाचारों के बाद आप जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। अब समाचार विस्तार से। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही हैं। श्रीमती गौर भाजपा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है।
2: कक्षा 6वीं से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। CBSE ने बताया कि छात्र आज रात मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों की 13 पारियों में 57.3 के औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़

डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेकर ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल को एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू रसोई गैस कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा

0: करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और

0: आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल

0: एनी जी आई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड वेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज़ अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आर जी बर्मन ने संगीत बद किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

प्रिय श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही इस सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भांति का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है। भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है।

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए फिरती हूं मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी छुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है।

प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही है कि प्यार की गली बहुत संकरी होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी। बिल्कुल सही, जो कब आएगा, कितना इंतजार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफर का कार्यक्रम हम सफर बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज भी नहीं रह गई। वो रह गुजर, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं।

हैं, वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है? जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना?

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है जब तुम पुकारते हो। तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूं, मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी।

और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथी साथियों की आवाजों में इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं, ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं? साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज्यादा ज्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता के कुछ लाइनें यहां पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब भी आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद।

0: जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
1: क्या बात
2: जैसे
1: है।
2: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
2: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: किशोर
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं, और वो शामिल हैं हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आग चुराएं, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अध पका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहां तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।

भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। खास तौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है, उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली

0: बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने

0: के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी TDP ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और TDP सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के

0: नबातीये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सतावाहन नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए

0: तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, साहिर लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमी का संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बद किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लिख भेजते हैं हमें आपकी मनचाहे गीत। लीजिए, हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा रमेश चंद्र वर्मा निर्मला वर्मा अनुज आयुषी अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत समीर के बोल धुन बनाई है नदीम श्रवण ने

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए, हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का
1: सुख
0: संगीत।
1: हो या सुख, जब सदा संग रहे ना।

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खान पूरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्ला अंसारी, आसमा नास अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश सरोज, आरती रेखा रितिका, रिचा स्वीटी सागर, रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का, और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपनी मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: दूसरा और अंतिम भाग, लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिये का नाम राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। लो, कल किसी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल किसी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: हद तेरे की, हार हो गई। जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो क्या करना है?
2: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, अजरा सरदार मनबहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी बिल्कुल।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मनबहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के माने ही रखूंगा।
3: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
3: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
6: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया।
7: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
6: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
7: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्जी को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
6: उफ दादी जान,
7: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
6: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
7: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
6: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
7: वो तो हमने आज ख्वाजा सराव को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
6: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
7: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
6: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
7: उफ़।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। इसका

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे। कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था। अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात के तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशी कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमाबरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहम दिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: उफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मन बहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

वाह, तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के खरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगम ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी।

0: मंजूर के बच्चे नालायक लासक माल कहां छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: देता है कि छुरा पार कर दूं?
1: अभी सब देता हूं हुजूर, अभी सब देता हूं।
0: ला

0: अरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आन तक की।

0: बीस अजी। इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है सरदार इंगले।
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

जहां बना तले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली। मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है। हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। तिले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा। खुदा हाफिज।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह ये शायद उसके होठ हैं। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं
1: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जानें बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ,

0: हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
1: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को

लाला शीतलदास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
2: जी।
3: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
2: जी।
3: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस

0: करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: कुर्बानी,
0: तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक
0: तो
1: है,
0: मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो
1: प्यारा,
0: है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो
1: हाँ,
0: उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है।
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे। ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है।
1: अच्छा
0: तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने,
1: दिल्ली
0: तो
1: में।
0: रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक
1: अच्छा
0: ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में,
1: में। हाँ
0: और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां
1: हाँ
0: गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना,
1: जी
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए।
1: जी
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो
1: भूलो
0: सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए। लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि
1: हाँ
0: ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे, और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है।
1: जी
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा

0: हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया, मुझे याद है, क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्यूटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है। जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा इसी गीत को
0: इसी गीत
1: आप
0: को।
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूं, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूं, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया।
0: जी
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला। और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी
0: ए मेरे वतन के लोगों की
1: लोगों
0: जो भी
1: रॉयल्टी आई।
0: रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को।
1: और
0: वो
1: एक
0: मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
0: जी
1: लोगों
0: जरूर
1: जरा
0: जरूर।
1: आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
0: जी
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और
0: हाँ
1: कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग खड़े।
0: जी
1: तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त ये लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे।
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो
1: हाँ,
0: जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज़, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ, अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी।

0: अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार,
1: जी
0: वो मराठी भी पढ़ते थे, तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे, और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी,
1: इतनी भाषाओं का
0: इतनी भाषाओं के हमारे वहां अखबार
1: आते
0: आते
1: थे
0: थे
1: और उसे पढ़ा
0: और
1: जाता था।
0: आज भी आते हैं, वो मैंने
1: जी
0: बंद नहीं किए।
1: जी
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं
1: नहीं
0: होती।
1: होती।
0: बीबीसी न्यूज उनका रोज का सवेरे का 5:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में
1: जी
0: आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ,
1: जी
0: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना, तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था, और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग-अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित
0: हाँ
1: था और
0: हाँ
1: हर कण कण
0: तो
1: में वो देशभक्ति का
0: ये जो
1: जज्बा था।
0: जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ, और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह, मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो,
1: वाह
0: अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह, क्या बात है। महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है
0: जी
1: ये,
0: जी
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए। ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी,
1: रहते हुए
0: उस
1: भी,
0: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और
1: वो
0: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के
1: हाँ
0: बताइए?
1: हाँ नहीं नहीं लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लाहिरी ने।
0: जी
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो,
1: हाँ हम
0: जो
1: अभी
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का?
1: हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक
0: जी
1: दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आजादी मिली,
0: जी
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए। लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए। कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही। निखिल प्रकृति लह लही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली
0: मिल
1: थी।
0: गई।
1: और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम
1: ये वही
0: हमारा
1: तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं,
0: जलाएं,
1: छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं
0: रहने
1: रह
0: पाए।
1: जाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा और कुछ नहीं।
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
1: ठुकरा नहीं सकते,
0: भुला नहीं सकते, झुठला नहीं सकते
1: हाँ।
0: हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम
1: ये
0: सुन
1: गीत
0: लें।
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त, ये इतना बड़ा दिन था
0: जी,
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली, बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी

0: ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
1: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
1: जागृति हुई, एक
0: जागृति मिली
1: आंदोलन का
0: हमको।
1: जो हाँ बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
0: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
1: जी।
0: और लेकिन लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
1: अच्छा।
0: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या? क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे
0: मेरे
1: बच्चों
0: बच्चों संभाल
1: संभाल के।
0: के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये
1: जी,
0: कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि
1: बहुत
0: उनको
1: बड़ी।
0: वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े
1: जी
0: बड़े देश,
1: जी
0: आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है
0: हर एक लाइन सुनिए आप।
1: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था,
0: जी
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत।
0: संगीत
1: तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे, मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे।

0: छूटा राही चल
1: चल
0: अकेला।
1: अकेला।
0: ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए, तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ। और ओपन एयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए, पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा। लीजिए, सुनिए।

0: वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 30। सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, कुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, बोरो, लैलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 48 है। ये बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, छाल, लोटान, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 54 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, कोल्हुआ, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।

राम राम संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के राम राम। खेती सबो के सेती भैया और खेती माँ बस थे प्राण। ए बात ला जम्मो हमर किसान भाई मन सुरता संगवारी मन जाना था भाई कस के आप मन जांगा टोर कमा था। फिर देखो आधुनिक खेती के आए ले ज्यादा उत्पादन ले के चक्कर में गांव गांव देखियो तो संगवारी मन आनी बानी के रासायनिक खातू है कीटनाशक ढूंढा रहा थे जेखल ले हमारा स्वस्थ धराव खेत हरा के बात करबो वह पूरा नहीं होते भाई हो नहीं हो ते कर से आज हमला स्वस्थ रहना है अवैया पीढ़ी स्वस्थ बनाना है तो हमला स्वस्थ अन्न के उत्पादन करे पहली तेरे से हेरी बेरी अपन कार्यक्रम के माध्यम ले हम आप मल्ला पारंपरिक खेती के बात ला करत थन। कोदो कुटकी रागी श्री अन्न जिला कहे जाते स्वस्थ अन्न कहे जाते एकरो रगबा।

आज बढ़ाए के जरूरत है। हम तो यही कहबो न, स्वस्थ अन्न के उत्पादन करबो, स्वस्थ अन्न के उत्पादन करबो, कस के खाबोन और कस के जीवन। फिर भाई निश्चित रूप ले हम सबला हमर जिन भोजन है अन्न है वह स्वस्थ हवा के नहीं, एक ढर ध्यान देना है और स्वस्थ अन्न के उत्पादन करबो तभी हम स्वस्थ भोजन ग्रहण कर सकत हन। अब आप मन सुनाबो फरमाइशी गीत के कार्यक्रम, आप मन के गीत आवा वही धर चलत हन।

स्वागत है आप मन के गीत कार्यक्रम में। मैं हूँ संगवारी आप मन के राजू भैया। कार्यक्रम के पहली गीत पर स्वर है पंचराम मिर्झा और कुलवंतीन बाई के। पसंद करे हमर ए माया रुमन आप हो बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति रामचंद्र चंद्रेश चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति सांकरा सोमनी राजनांदगांव ले नारायण लाल साहू कुलवंतीन साहू दिवेंद्र कुमार नेहा मिलिंद कुमार रजनी मास्टर प्रणय कुमार और रुद्रदास प्रताप साहू। आप हो बसी बार पाली ले शिव नारायण नामदे सविता देवी कुमारी आंचल अंचल कुमारी चांदनी विनय कुमार वर्षा और डॉक्टर मनोज कुमार कंवर। शांति नगर पाली ले विष्णु कोराम श्रीमती संतोषी कोराम कुमारी आरती पूर्वा कुमारी प्रतिभा योगेश नीलेश चंद्रशेखर और परिवार मन। आप हो हमर मयारू संगवारी जांजगीर मेहंदले राम नारायण कश्यप कविता देवी कश्यप कुसुमलता कश्यप खुशबू कश्यप। आप हो हटोत बाजार लाहौद लेन भैया कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल। आप हो भाटा पारा दतरेंगी ले हमर मयारू संगवारी द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर वर्मा दीपक कुमार झावेंद्र कुमार वर्मा महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश कुमार तारिणी सूरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर मन। कोरबी अकलतरा ले हमर मयारू संगवारी मोहन सिंह राज अनिता राज सुनीता सुमित सोमू मंजीत और मानस राज। आप हो बाजार पारा बेमेतरा ले भाई भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की और लक्की सिन्हा मन। अवैया पीढ़ी भर अमरैया हम बनाबुन अवैया पीढ़ी भर अमरैया हम बनाबो आमा नींबू चीकू संतरा के पेड़ ला हम लगावो। यही भावमा हम आप मन ला सुनवातन आप मन के गीत के ए पहला गीत सुनाओ।

भाई बनी हो आप सब जानत हो बीच बीच में जिन पानी गिरत है, हालांकि में परेशानी तो कतको जी किसान भाई मन रहे, लेकिन ये है हमार किसान भाई मन भर वरदान है। आप मन अभी घलो बढ़िया कस के घाम करे थे तो ग्रीष्मकालीन जोताई करके अपन फसल ला बढ़िया उर्वरा शक्ति बढ़ा सका था। और वैज्ञानिक मन कथे जी जैन खेत मा ग्रीष्मकालीन जोताई जिला अकरस जोताई घलो कथन करते वहाँ नाइट्रोजन धारण करे के क्षमता ज्यादा रहते और भूया मा लुकाए जैन विषाणु है जीवाणु है एकर अंडा मन जर भूज के नष्ट हो जाते। कार्यक्रमला आगू बढ़ावो रसेड़ा अकलतरा ले हमार मयारू संगवारी मन हमारा चिट्ठी लिखे आपन की सुने आप हो मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार साहू कीर्ति कुमार साहू संध्या साहू डिकेश कुमार साहू वासु डाली और पूर्वेश साहू मन आप हो कतिया पारा जूना बिलासपुर ले हमार मयारू संगवारी सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष रवि मोनू कान्हा आदित्य देवांगन बम्हार चाटीडी ले गंगा देवी देवांगन पूनम देवांगन धनेश्वरी महेश्वरी कुमारी मिलके बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन आप हो रोहासी बलौदा बजाले हमर मयारू संगवारी डगेसर राम साहू नूतन साहू घनश्याम साहू और गौरा साहू डोंगरगांव छत्तीसगढ़ ले भैया राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिस का तन्मय गजभिये बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ ले हमर मयारू भैया रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्पल देवांगन और आप हो नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज लुथरा खमहरिया ले ये संगवारी मने भरसुदा ले भवानी संतोषी गजेंद्र चिराग चंद्र प्रकाश और नेहा मन हम तो ही कहबो के बागे बगीचा संग हमरो मितानी बागे बगीचा संग हमरो मितानी पर्यावरण के संरक्षण ले समर जाहि जिनगानी। तो यही भाव आप मन ला सुनाथन केदार यादव साधना यादव के गाय ये सुघर गीत ला सुनाऊं।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप मन के गीत कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। मैं हूँ आप मन के संगवारी राजू भैया। संगवारी हो आप मन हरियर खातू के नावला जाने हो, सिनई है, ढेंचा है, लोबिया है, बरबट्टी है, एक हर खेती करके हमारे किसान भाई मन ओला बढ़िया खेत मा लगा के जोत के बहुत अच्छा हरियर खातू बना सकत है, जेमा सबो किस्म के पोषक तत्व हमारे पौधा पर लुका रहे थे। अब आप उनके गीत ला जिन पसंद करे संगवारी मनुख नाल पढ़थन, नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, मोहनपारा कलतरा ले अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी, बेलगाना शक्ति पारा ले भैया श्याम शंकर मिस्त्री, बाबा विजय पायलट, रागनी मनीषा, बोधगिरी महेश कैलाश, अवताराचंद साहू, आप हो बिलर गांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन मन, तेली पारा बिलासपुर ले भैया रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, शनुला श्रीवास और अनीता श्रीवास, आप हो चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले हमर मयारू संगवारी पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र सेन, ये ले है रौनक सिनमन, आप हो हटरी चौक बिलाईगढ़ ले खीखराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी देवांगन और आप हो पिंक देवांगन, दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन, हम तो ही कहबो संशोधन कर भुइया, संशोधन कर गुइया खेती लहे जिनगानी, संशोधन कर गुइया खेती लहे जिनगानी, जांगर हमर बने रहे, जांगर हमर बने रहे, बने रहे नारी परानी। यही भामा आपने सुना थन आशा रामपुरते के गाय ये सुगर गीतला सुनाऊ।

पियर पान हो गे रे संगी संसो मा गुया पियर पान हो गे ये भाव भरे गीत ला गावत्री से आशा रामपुर ते मन आपला मंडी मौसम की जानकारी दे दिन मिले जानकारी के अनुसार मौसम की जानकारी से अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बादल छाय रही कहूं कहूं हवा गरज के संग में पानी गिरी के संभावना है। मंडी के बात करबो तो तिपरा मंडी के हमला भाव मिले है पताल के भाव 31 रुपये क्विंटल आलू 1600 रुपये क्विंटल गोंदली के भाव 1400 रुपये क्विंटल करेला के भाव 1600 रुपये क्विंटल लौकी के भाव 1100 रुपये क्विंटल और धान के भाव 1900 रुपया क्विंटल। आप मन के गीत के अगला गीत ला पसंद करे है मर मयारू संगवारी मन ग्राम पंचायत बठेना ले भैया बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा आप चटौदा सारा गांव ले सुजान वर्मा सहोद्रा वर्मा आयुषी कृत वर्मा धोरा बांधा भाटा पराली हमर मयारू संगवारी है प्रमोद साहू देव कुमार साहू नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू और आप हो लक्षणपुर छत्तीसगढ़ विश्वनाथ साहू पंकज साहू तिरुपति साहू तनेश आरू साहू पौड़ी लाफा पाली जिला कोरबले भैया विद्यानंद साहू त्रिवेणी साहू रानी बबली सुमन मंटू राम सनही और नीना साहू ब्रह्मानंद परमानंद संध्या प्रियंका हर्षु शत्रुघ्न साहूमन भरेवा पथरियाले हमर मयारू संगवारी हैं चंदुला सिंगरौल नारायणी नोमेश वान्या सिंगरौलमन पीपर पारा पाल चुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वर दिवाकर भानुप्रिया दिवाकर योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर मन तिवरता ले हमर मयानु संगवारी अमृतलाल अग्रवाल राजकुमारी नेहा आकाश श्रुति विवेक और विवान अग्रवाल मन आप हो देवरी भाटा पारा ले हमर मयारू संगवारी गन्नूला रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री मयाराम रजक पुणेश्वर रजक फणेश्वर रजक और मुकेश कुमार कुमारी हाब्या रजक टानिया रजक मन आप हो हतकेरा भाटा पारा ले पंचू यादव दादू यादव बावलीले कमलेश साहू हरेंद्र साहू सुशील बैसपुरिया आप सबके पसंद में आप मन ला सुनाथन हमन संगीता चौबे के गाय ये सुघर गीतला सुनाऊं।

ये गीत लश्वर दृश्य संगीता चौबे मन संगवारी हो खेत ला अगर स्वस्थ रखना है तो हमला जैविक खेती ढजार पर ही तेखरी सेती घेरी विधि केतन के आप मन वर्मी कंपोस्ट है नाडेप कंपोस्ट है इला ज्यादा ज्यादा बनावा अभी समय है और गंगरुआ खातों के उत्पादन ला बढ़ावा इला अपन खेत में स्वयं डाला और ज्यादा उत्पादन करके इला बेच के पैसा घलो पा सकत है। कार्यक्रम के आखिरी गीत पर स्वर है संतोष शुक्ला और विमला निषाद के पसंद करे हमारे संगवारी मन आप हो बेमितरा ले सूरज सारथी पूर्णिमा सारथी नवागढ़ कटेले हमारे मैरू संगवारी नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामनी वर्मा दत्रेंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु आप हो उड़नताल दगौरी ले श्यामता प्रसाद गायकवाड़ हेमलता जागृति सरला पल्लवी समीर गायकवाड़ आप हो हमारे मैरू संगवारी सेवा चौक राजीन ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तवन अमरपुर पेंड्रा ले हमार मयारू संगवारी है दीपक कुमार रोशन कुमार वंशीला रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा दिव्यांश और आरोही मन ये संगवारी मन है पहारा हिवारा ले पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर मन नैला बोड़सरा जांजगीर ले हेमदेव तिवारी दुर्गा प्रसाद तिवारी अमन कुमार मीनाक्षी तिवारी उमा बाई तिवारी ठगिया देवी तिवारी अंजुलता तिवारी विष्णु प्रसाद तिवारी मोंगरा देवी मिश्रा प्यारे लाल मिश्रा आप हो बलौदा अकलतरले दिहण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और समृद्धि पटेल मन ये संगवारी मन है रामचंद माखीजा काफिर श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा माही पूजा छुटकी शरद और पूरा उनका माखीजा परिवार मन तो आप सबके पसंद में आप मल्ला सुनाथन कार्यक्रम के आखिरी गीत जिला स्वर्देश संतोष शुक्ला और उकर संगवारी मन सुनाओ।

एक गीतला गावात्री से संतोष शुक्ला ओंकर संगवारी मन जात जात अपन पता बता दिन आप मन के गीत ग्राम सभा अनुभाग पोस्ट बॉक्स नंबर 49 द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर पिन नंबर है 495006। एक संग आज के ग्राम सभा सिराथे कार्यक्रम ले राजू भैया दबिता जय जवाहर राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत अभिनंदन। स्वीकार कीजिए आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में चाहत फिल्म से। निदा फाजली के लिखे बोल हैं, अनु मलिक का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश, मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस, रिहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, पम्मी,

शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, महेंद्र विक्रांत और इफ्जल ताज, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी राय। और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है महाराष्ट्र से पीएस निर्मला विशाल, सोंगा से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत, रोहासी से मुकेश, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदी लहरे, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश हीरोमन, पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, यवतमाल से राहुल सरला विशाल, चेतन रोशनी, प्रियांशी, दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका भानु, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, कालेगांव, जफराबाद से सुधाकर, राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली और सर्वत देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मुस्कान और मेघा मस्कीन ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो आप सबकी पसंद पर लीजिए पेश है चाहत फिल्म का गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक के स्वर में।

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है राहत फतेह अली खां और महालक्ष्मी की आवाज़ों में, झूम बराबर झूम इस फिल्म से। शब्दों के मोती पिरोए हैं गुलजार ने और संगीत से संवारा है इस गीत को शंकर एहसान लॉय ने। ईमेल के जरिए जिन साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं नांदघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका निशिका तन्मय गजभैये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनित, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा सुरित, रमेश साहू, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुरोचना, चेतन भगत, राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन, वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगद परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान अब्बासी, गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद रिफात, शाहत, बिलासपुर से छनुलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन सेन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप और तेलंगाना से मोहम्मद बुराउद्दीन, महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या, सविता, नागपुर से वैशाली, शैलेश, टुक टुक, प्रिंस, एकांश, सुमित, ध्वनि, जालंधर से मीना कौर और मन्नत, यवतमाल से पंजाब रामटके, यशोधरा श्रव्या रामटके, भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, अबरेटी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी साथियों की पसंद पर लीजिए पेश है झूम बराबर झूम फिल्म का ये गीत।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में रंग फिल्म से। सुरेंद्र साथी के लिखे बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। जाखोज से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक, पूजा खटक। भंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल। गाजीपुर यूपी से सुरेश उर्मिला, दीपक स्वाति। पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। डव्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया। बुलडाणा से अमोल, शोभा, दीपाली, श्लोक कुमार। जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद, अलका। बोरसरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, वीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। राजकोट से जूली जगदीश, प्राची, प्रवीण। गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रिशेख, रही मुन्ना। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा।

देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। सौंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन। कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग। रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ, सायना, मैंडी शर्मा। पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा। और धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम संबंधी एक जानकारी हम आपको दे दें। आज रात्रि 8 बजे आप आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुनेंगे विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज़ आकाशवाणी। आज के इस क्रम में आकाशवाणी के पूर्व सहायक ग्रंथालय एवं सूचना अधिकारी श्री विशोक कुमार पांडे जी से सुनील चिपड़े की बातचीत का आप लेंगे आनंद हमारे ही केंद्र से। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और प्रस्तुति सहयोग, रिकॉर्डिंग और संपादन सुनील चिपड़े का होगा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हम पेश करेंगे कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम को पेश होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज संध्या 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला के प्रसारण क्रम में आज का विषय होगा वंचितों को वरीयता। ये कार्यक्रम हम दिल्ली से रिले करेंगे और आज रात्रि 8 बजे हर दिल की आवाज आकाशवाणी का आप लेंगे आनंद, जिसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के पूर्व सहायक ग्रंथालय एवं सूचना अधिकारी विशोक कुमार पांडे जी से सुनील चिपड़े की बातचीत। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी और प्रस्तुति सहयोग, रिकॉर्डिंग एवं संपादन सुनील चिपड़े का होगा। इसके पश्चात 8:20 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। इसके अलावा कल सुबह और शाम के आकर्षणों में कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अमराई, जिसमें कल के कलाकार होंगे भूपेंद्र जायसवाल, गीता साहू, दलेश्वर और इनके साथी। 10 बजे का समय होगा तुहर गीत तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम का। कल की प्रस्तुति मानस तिवारी की होगी और 10:30 पर आप आनंद लेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम का। 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा और इसके पश्चात शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुनेंगे हमारे ही केंद्र से। 5:05 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। आगे इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा पपीता की उन्नत खेती तैयारी एवं प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी देंगे कृषि महाविद्यालय कटघोरा के सहायक प्राध्यापक श्री योगेंद्र सिंह और इनसे बातचीत करेंगे राजू भैया। मित्रों, कल शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में विश्व समुद्र दिवस पर महासागरों के महत्व पर आज की बात क्रम में होगी सजीव चर्चा। आगे इसी कार्यक्रम में क्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता। संध्या 6:20 और 7

बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, और संध्या 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला का कल का विषय होगा किसान सशक्तिकरण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे मोहित चौहान के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत, और इसके अलावा कल रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के इस वक्त 6:05 होने को हैं। जिले की चिट्ठी का प्रसारण कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में सुनिए बिलासपुर जिले की चिट्ठी।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बिलासपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 31 मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के मल्हार में ज्ञान भारतम अभियान के तहत प्राप्त दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मल्हार में 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पट्टिकाएं पांडुवंशी वंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शिलालेख 6वीं-7वीं सदी के हैं और प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जा रही ये ताम्र पट्टिकाएं तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते 4 जून को बिलासपुर में मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर सक्ती और सारंगढ़ बिलाई के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों, राजस्व प्रकरणों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए और प्रशासन को जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने, पेयजल व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और किसानों को समय पर खाद तथा बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। इसी दिन मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की।

0: अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मधुबन जूना क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर और एजुकेशन हब का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, खेत बचाओ अभियान के तहत तकतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत खजूरी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, उर्वरक का संतुलित उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त संचालक आर के राठौर ने किसानों को नील हरितकाई के उत्पादन और उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें प्राकृतिक खेती के विभिन्न मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार मोनिका सिंह ने पिछले दिनों तखतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत निगारबंद, राजा कापा, बहु हरदी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राहियों द्वारा किए जा रहे श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे स्वच्छाग्राही समूह के सदस्यों से भी बातचीत की। उन्होंने ग्राम सरपंचों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को समझाइश दी जाए। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा शनिवार 6 जून से आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 9 जून तक हर दिन दो पालियों में हो रही है। 6 जून को भाषा और निबंध तथा 7 जून को सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। वहीं कल 8 जून को सामान्य अध्ययन तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र तथा 9 जून सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में हो रही है। श्रोताओं, राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में रिक्त सीटों के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिलासपुर के आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कोपा, विद्युतकार, फिटर, शीट मेटल वर्कर, स्टेनो, हिंदी अंग्रेजी, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सहित 32 व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बिल्हा स्थित ITI में व्यवसाय, कोपा, स्टेनोग्राफी, हिंदी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और वेल्डर जैसे व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी बिलासपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग की जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले करीन गोट बात। घरेलू रसोई गैस कीमत मा 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। उन्हें केंद्र सरकार हा कहे है की भारतीय की कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना में अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के दो दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू। राज्यपाल रमेन डेका हा ए सम्मेलन के करीन उद्घाटन। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज छत्तीसगढ़ दौरा बेरा राजधानी के राज अतिथि गृह पहुना में पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले भेंट करीन। ए दौरान साध्वी निरंजन ज्योतिहा प्रतिनिधि मंडल ने बताए गए समस्या के संगे उखर मांग और सलाह बारे में जरूरी कदम उठाए के भरोसा देवाइन। ए मौका में राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद, उपाध्यक्ष चंद्रकांत वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष RS विश्वकर्मा और लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा समेत पिछड़ा वर्ग में अवैया कई ठीन समाज मन के उपस्थित ही। अपन दौरा बेरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल रमेन डेका ले लोक भवन में सौजन्य मुलाकात करीन। उन्हें साध्वी निरंजन ज्योतिहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले घलो आज रायपुर स्थित उखर निवास कार्यालय में भेंट करीन। ए दौरान इखरवन बीच वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शिक्षा में विकास और सामाजिक आर्थिक विकास ले जुड़े कतकोन विषय में गोट बात हुई। घरेलू रसोई गैस कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। नवा रेट रतिहा 12 बजे ले लागू हो गए है। दिल्ली में आज ले घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपया ले

0: के 942 रुपया हो जही। इही बीच केंद्र सरकार हा के है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी के कीमत मा बहुत ज्यादा बढ़े के बावजूद भारतीय घर मन मा रांधे पसाए वाले गैस हा विश्व स्तर मा सबले कम कीमत मा मिलत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हा एक ठिन बयान मा कहे है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना मा सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा असन विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना बहुत कमती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए हा सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बेचे के दावा बारे में खंडन करी है। एनटीए हा कहे कि यह हर विद्यार्थी और उनका परिवार वाले मन के संसो के फायदा उठैया नकल गिरोह के काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा 23 जून के दुसरैया नागरिक समारोह में ए बछर के 65 झीन मनखे मन ला पद्म पुरस्कार दी। एकर पहली पाछू महीना श्रीमती मुर्मू हा राष्ट्रपति भवन में होय पहलैया नागरिक अलंकरण समारोह में 66 झीन प्रतिष्ठित मनखे मन ला पद्म पुरस्कार दे रही। यहाँ बता दें कि ये पुरस्कार ला हर गणतंत्र दिवस के मौका में घोषित करे जाते। कारहा कानूनी माप सिस्टम के चलत खाद्य तेल पर मानक पैकिंग लागू करी है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हा के है कि संशोधित नियम मल्ले प्रमुख खाए के तेल मन पर मानक पैक तय करेगी है। स्वीकृत पैक 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा रायपुर संभाग के समीक्षा बैठक में कहिन है कि किसान मन ला खाद और बीज मिले बारे में कोनो प्रकार के हलाकानी नहीं होना चाहिए। ओमन निर्देश दे है कि छोटे और सीमांत किसान मन ला प्राथमिकता के आधार में खातु और बीजा दे जाए और एकर जवाबदेही संबंधित कलेक्टर के होही। मुख्यमंत्री हा नैनो उर्वरक के बउरई ला बढ़ावा दे बर और गैर कानूनी ढंग ले रेती खनई पर कड़ा कार्रवाई के निर्देश घलो दे है। छत्तीसगढ़ सरकार हा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान पढ़िया लयिका मन बर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत एडमिशन के काम शुरू है। योजना के माध्यम ले चुने पढ़िया लयिका मन ला प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालय मन में कक्षा 6वीं ले 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाही। आवेदन जमा करे की आखिरी तारीख 15 जून रखी गयी है। एक हर बार चयन परीक्षा 5 जुलाई की हुई। ए बछर विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लयिका मन पर पहली बेर 2% आरक्षण घलो रखे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो बांचे समाचार डहार। देश भर के सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू हो गए है। राज्यपाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन के उद्घाटन करीन। एमा बोला तो मन कहीन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के काम न केवल वित्तीय सलाह है भल्लू को मन कई ठिन व्यवसाय के सफलता में एक ठिन सुग्घर मार्गदर्शक के भूमिका घलो निभाते हैं। ओमन यहू कहीन कि आम लोगन के सहूलियत ला ध्यान में रखत टैक्स सिस्टम ला और ज्यादा सरल बनाया जाना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के कई ठिन जिला मन में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम रखे गए रही। एक हर चलत उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा जग रखे गए कार्यक्रम में शामिल हुई। ये मौका में श्री सावहा खुदे साइकिल चला के पर्यावरण संरक्षण और खुद के फिट रहे बर आरो दिन। ये कार्यक्रम सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश छिकारा घलो शामिल हुई। उन्हें कोंडागांव जिला में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकालेगी। ये कार्यक्रम नूपुर राशि पन्ना समेत अन्य अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्यार्थी खिलाड़ी और आम लोगन मन घलो शामिल हुई। ई कड़ी में मुंगेली पुलिस डहर ने जिला मुख्यालय और लोरमी में साइकिल रैली रखेगी। उन्हें कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में साइकिल रैली निकालेगी जेमा कलेक्टर रोक्तिमा यादव समेत जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बछर पूरा होए के मौका में देशभर में कई ठिन कार्यक्रम हुआ थे। यही कड़ी में मुंगेली स्थित जिला में साफ सफाई के अभियान चलाएगी। ये मौका में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन अस्पताल कैंपस के साफ सफाई करके आरो दिन।

0: आकाशवाणी के 90 बछर पूरा हुए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर ढाले काली 8 जून के विशेष कार्यक्रम प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश ढाले बनाए गए एक कार्यक्रम के प्रसारण बिहनिया 8:30 बजे ले 9 बजे ही छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एक कार्यक्रम ला एक ही संग्रह प्रसारित करही। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे के चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरा पर करे एकर संगे ओमन सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनिया छत्तीसगढ़ के पहले या क्रिकेटर बन गए हैं। आयुष पिछला रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ बस 60 इन मैच के 13 पारी में 57.3 के औसत ले 573 रन बनाए हवे जेमा दू शतक और दू अर्धशतक शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन में माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग काम पर 9 जून ले 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम होही। ए पाए के कई ठीन यात्री गाड़ी प्रभावित रही जेमा रायपुर डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ रायपुर समेत 8 ठीन डेमू और मेमू गाड़ी मन 10 और 11 जून के कैंसिल रही। अब थोरकुन समाचार सारमा। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ला संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के सदस्य नामित करे गए है। राज्यपाल रमन डे कहा रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज समारोह दिवस में उनकर मूर्ति के अनावरण करीन। ए मौका में ओमन महाराष्ट्र मंडल ला एम्बुलेंस दे घलो करीन। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ए बछर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के विषय है समस्या ले समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले करीन गोठबात। घरेलू रसोई गैस कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपएगी। उन्हें केंद्र सरकार हा कहे है कि भारतीय सिलेंडर के कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना में अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू। राज्यपाल रमन डे कहा इस सम्मेलन के करीन उद्देश्य। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: श्रोताओं जिले की चिट्ठी और छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम में लीजिए पेश है उदित नारायण की आवाज में और प्यार हो गया इस फिल्म का गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और संगीत नुसरत फतेह अली खां का। ईमेल के जरिए जिन साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, सीतामणि। बिहार से मसर्रत जहां, तलहत फरहत, रिफत, नुजहत, शाजिया शाहीन, नाज और नाजिया नूरी नाज। हिगोली महाराष्ट्र से शाजी बोडखे, नंदा हनुमान और उत्तम। बठिंडा पंजाब से परमेन सिंह, मंजीत, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश। राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल, उमा गुप्ता। राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार। रायगढ़ से उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल, उमा। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज शाह। अडार नानघाट से हमारे साथी हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडिल। नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव। राजकोट से राजेश, स्वाति, ख्याति। सरगुजा मैनपाट से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई। खमरिया

श्रोताओं उस गीत के साथ ही ईमेल करें कि सुने, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में कानून की बात कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। कानून की बात आज इस कार्यक्रम में सुनिए। संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंट करता है चंद्र ऋषि ठाकुर। प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की है।

0: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं, चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे संपत्ति विवाद से संबंधित सभी कानूनी मामलों के बारे में। पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री आशुतोष द्विवेदी जी को। आप जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर में अधिवक्ता के कार्यरत हैं, तो आइए सब हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है द्विवेदी जी आकाशवाणी जगदलपुर के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आपसे हम पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये संपत्ति विवाद क्या होते हैं, और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ किस प्रकार के विवाद ज्यादातर देखने को मिलते हैं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, संपत्ति विवाद में चल अचल संपत्ति शामिल है। चल संपत्ति से मतलब यह है जिनको इधर से उधर किया जा सकता है, और अचल संपत्ति में अस्थायी संपत्ति जो जल, जंगल, जमीन, ये सारी। तो अब चल और अचल संपत्ति के विवाद के विषय में जहाँ तक प्रश्न है, प्रमुखतः विवाद मालिकाना हक से होता है, वसीयती अधिकार के संबंध में होता है, वारिसों के संबंध में होता है। ये प्रमुख तीन प्रकार के विवाद होते हैं। संपत्ति के अधिकार को लेकर के लोगों के बीच में जहाँ असहमति बनती है, वहाँ पर ये विवाद शुरू होते हैं। और चल और चल संपत्ति के संबंध में वारिसों के बात को, विरासत हक को लेकर के, मालिकाना हक को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के, उसकी सीमा को लेकर के जहाँ पर विवाद उत्पन्न होते हैं, उसे संपत्ति विवाद कहा जाता है। भारत देश में

0: ये आपने पूछा कि बहुतायत कौन से विवाद आते हैं। हमारे देश में अज्ञानता है, अशिक्षा है। भारत देश के सारे प्रदेशों में भूमि से संबंधित कानून बने हुए हैं, जो कि प्रादेशिक कानून होते हैं और कुछ सेंट्रल लॉ हुआ करता है, जो कि राष्ट्रीय है उसमें कई तरीके के प्रावधान दिए हैं। जैसे संपत्तरण अधिनियम बनाया गया है, उसमें इन सी चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि एक संपत्ति दूसरे के पास किस तरीके से जा सकती है। लोगों को इसका ज्ञान कम है, वो समझ नहीं पाते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, परचेज करने के बाद पता चला कि म्यूटेशन की एक कार्रवाई होती है, जमीन पे अपना नाम दर्ज कराना। जो रेवेन्यू पेपर्स होते हैं हमारे, जो छत्तीसगढ़ के कंसर्न में अगर बात करें तो किस्तबंदी खतौनी B1 होता है, खसरा होता है। जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है या जमीन को किसी अधिकार के तहत प्राप्त करता है तो उस बारे में राजस्व अधिकारी को सूचना दी जानी होती है। राजस्व अधिकारी का मतलब है तहसीलदार हो गया, इनको सूचना देनी होती है। गांव में पटवारी होता है, राजस्व निरीक्षक होता है, इन लोगों को सूचना देने की जरूरत पड़ती है। सूचना देते हैं तो बाकायदा उस सूचना को दर्ज किया जाता है, तहसीलदार के पास ले जाया जाता है कि पहले इस संपत्ति के ये मालिक थे। इस मोड से हमने बताया आपको, संपत्ति अंतरण अधिनियम दान के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से, गिरवी के माध्यम से, इन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है तो जो जिस व्यक्ति के पास आ गया है उसको आप B1 में दर्ज करो, उसके स्वामित्व में दर्ज करो, खसरा में दर्ज करो।
1: ज्यादातर जब ऐसे जमीन के या फिर प्रॉपर्टी के मामले आते हैं तो पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति और स्वयं की संपत्ति की बात भी आती है। लोगों को जानकारी होती है कि पैतृक संपत्ति क्या है, पिता की संपत्ति क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो इन तीनों संपत्तियों में क्या अंतर है और इन मामलों को, जैसे अगर कोई संपत्ति का विवाद आ भी जाता है तो ऐसे मामलों को सुलझाने में वसीयत क्या भूमिका निभा सकती है?
0: देखिए, प्रॉपर्टी 2-3 प्रकार की होती है। एक तो पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति माने अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो तो पैतृक संपत्ति होती है। दूसरी संपत्ति होती है सेल्फ एक्वायर्ड, स्वार्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति से आशय है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी को स्वतः परचेज किया या अपने मेहनत से, अपने पैसे से, अपने परिश्रम से उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मतलब है पिता, बेटा, बेटी, भाई, इन लोगों ने सामूहिक धन से अगर प्रॉपर्टी को परचेज किया तो ये संयुक्त संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि सारे वारिशों को, यानी 3 पीढ़ी मान लीजिए, अगर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो उसके बेटे और उसके को उसमें बराबर का अधिकार होता है। यहाँ तक है बच्चा गर्भ गया तो भी उसका अधिकार बन जाता है। इसमें महिलाओं को लेकर के पहले कानून थोड़ा संकीर्ण था। संकीर्ण से आशय यह था कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में बच्चियों को हक नहीं हुआ करता था। अभी 2005 में केंद्र सरकार का कानून लाया गया और उसमें बच्चियों को भी, महिलाओं को भी, पुत्रियों को भी बाई बर्थ यानी जन्म से ही उनका पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से अधिकार दे दिया गया है। अब आया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बनाता है। इसमें जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जब तक वो जीवित है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता,
1: तो उसमें वसीयत की बात आ जाती होगी।
0: हाँ, उसमें यह होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी उसके जीवन काल में उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर। अब होता क्या है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड स्वार्जित संपत्ति होती है उसका वो व्यक्ति किसी भी तरीके से उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, उसको बयानित कर सकता है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, गिरवी कर सकता है।
1: और वसीयत अगर वो बना दे नहीं कि उसके बच्चों को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयत के माध्यम से अपनी स्वार्जित प्रॉपर्टी को दे सकता है।
0: मैंने बताया ना कि अपने मर्जी से

0: उस प्रॉपर्टी को व्ययनित कर सकता है, उसको किसी को भी दे सकता है, और उसने अगर वसीयत कर दिया किसी तीसरे के पक्ष में तो जो उसके वारिस हैं वो दावा नहीं कर सकते।
1: जी, और जब हम संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं, कोई संपत्ति हम अक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए?
0: संपत्ति खरीदते समय सबसे पहले तो जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का संपत्ति में मालिकाना हक आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है, किसी दूसरे का, यानी संपत्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, उसकी तस्दीक सबसे पहले कर लेना चाहिए। अभी तो काफी सुधार हो गया है, लेकिन हुआ करता था जो व्यक्ति जमीन को बेच रहा है फोटो तो भी नहीं लगती थी, उसका आधार कार्ड की कोई परिकल्पना नहीं, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं, नक्शे नहीं लगते थे, यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री की जा रही है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते थे, बहुत सारी इररेगुलरिटी हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें, कौन व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है, जो रजिस्ट्री करने आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा एक चीज़ बताया कि उसके पूर्वजों की संपत्ति तो नहीं है, यदि उसके पूर्वजों की संपत्ति है तो उसकी जाँच करें, और उनके कौन कौन वारिस हैं उसकी भी जाँच कर लें, पुराने रिकॉर्ड की भी जाँच कर लें।
1: जी
0: कैसे, एक एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा, जैसे जमीन, जनजाति समुदाय के व्यक्तियों की जमीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समुदाय नहीं खरीद सकता। दूसरी चीजें हैं जो हमको खरीदी में ध्यान देना चाहिए, कुछ अलॉटेड जमीनें हैं, जो जमीनें गवर्नमेंट ने आवंटित कर दी है, पट्टे पर दी गई है, लीज पर दी है, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दी है तो विदाउट परमिशन आप गवर्नमेंट आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, तो हमको ये भी देख कहीं आवंटित जमीन तो नहीं है, अगर आवंटित जमीन है तो इस जमीन के लिए कलेक्टर से परमिशन ली गई है सेल करने के लिए कि नहीं ली गई है। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तीन सारी चीज़ों को बारीकी से जांच करने के बाद जो है प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, उससे फायदा यह होगा कि भविष्य में विवाद नहीं होगा, मुकदमेबाजी में नहीं फंसोगे।
1: आपने तो बहुत सारी जानकारियां दे दी हमारे श्रोताओं को संपत्ति विवाद से संबंधित, लेकिन कोई जानकारी रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हो तो जरूर कहें।
0: देखिए, अभी जो स्थितियां बनी हैं हमारे देश में, जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, और बढ़ने के पीछे कारण यह है जिन व्यक्तियों को जमीनों की जरूरत है उनके बस के बाहर हो रही है, उसका कारण यह है जमीनों का जो खरीद फरोख्त हो रहा है, जो मीडिएटर लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, वो जमीनें उनके पास जा रही है। ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहला तो यह करना चाहिए कि जमीनों के संबंध में जांच पूरी तरीके से करिए, जमीनों की जांच करने के बाद उसमें आप आगे बढ़िए। अभी नालसा, सालसा और डालसा, नालसा का मतलब यह है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, स्टेट स्तर पे भी विधिक सेवाएं चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी विधिक सेवा दी जा रही है। इसमें क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारियां दी जाती है, और गांव-गांव में कैंप लगाए जाते हैं, और जिला विधिक सहायता की ओर से एक वकीलों का पैनल है जो बिना कोई शुल्क के आपको हमेशा जानकारी देने के लिए तैयार है। तो संपत्ति के मामले में यदि आपको कोई जानकारी लेना है, परचेजिंग करना है, या कहीं कोई आपको समस्या आ रही तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है और तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई है। विधिक सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में बताऊं आपको, लोक अदालतों का आयोजन, लोक अदालत का मतलब यह है कि आपसी झगड़े को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाना। लोक अदालत में क्या होता है, किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती,
1: आपसी समझौता हो जाए।
0: अदालत में फैसला होगा, एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा, उसमें क्या है वो जो सामाजिक सद्भाव है वो जो है नहीं दोबारा वापस आएगा। लोक अदालत के माध्यम से आप निपटारा करो, आपके केस का जल्दी निपटारा हो जाएगा, आपको

0: मान सुविधाएं मिलेंगी।
1: आगामी लोक अदालत
0: हाँ,
1: कब है?
0: आगामी लोक अदालत अभी 12 सितंबर महीने में लगभग नेशनल लोक अदालत तीन होती हैं, कम से कम तीन से चार, तो 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत है। और इसके बारे में खूब सारा प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे आपराधिक मामले हों, चाहे राजस्व के मामले, चाहे संपत्ति के मामले हों, सारे मामले एक ही छत के नीचे देन एंड देयर तुरंत जो है निपटाया जा सकता है। नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को ज़रूरत है तो 1500, इस नंबर पे फ़ोन करके वो पूरी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्टेट लेवल की जो विधिक सेवा है उसके भी नंबर्स हैं, हर जगह आज ऑनलाइन मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे नंबर, यहाँ पर एक एडवोकेट की हमेशा नियुक्ति रहती है, उनका अलग से विभाग है, उनका अलग से चैम्बर है, उनसे जाकर के कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। अधिक सहायता उन मामलों में भी मिलती है, पैसे नहीं लगा सकते हैं, कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में भी हमारा विधिक सहायता मिलता है। तो कानून के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे जो अदालतें हैं इनके द्वारा जो सुविधाएं रियल एक्ट की दी जा रही हैं, जिला विधिक सहायता के माध्यम से, राज्य विधिक सहायता के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर पे विधिक सहायता के अथॉरिटी के माध्यम से जो जा रही है उसको लेना चाहिए हर व्यक्ति को, और लोग ले भी रहे।
1: जी आशुतोष द्विवेदी जी, आपने संपत्ति से संबंधित विवाद के मामलों में जितनी भी सारी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी है, हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें जरूर लाभ पहुंचेगा। आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।

0: कानून की बात आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे। संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंटवार्ता, करता थे चंद्र ऋषि ठाकुर। प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: माँ सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: क्या कहता है, स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवा दे और ऊपर से उस पर करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
13: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
12: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस

0: अकाउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के मैं विभाष कुमार झा। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल रमेन डेका ने किया उद्घाटन। इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से जब्त किया करीब 63 लाख रुपए का गांजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर में पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने इन प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं के अलावा उनकी मांगों और सुझावों पर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल रमेन डेका से लोकभवन में सौजन्य मुलाकात की। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी आज रायपुर स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शैक्षणिक उन्नयन तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। नई दिल्ली में आज से घरेलू कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ती है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के तहत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या को कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का केवल वित्तीय सलाह तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विभिन्न व्यवसायों की सफलता में एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। इस सम्मेलन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे 1000 से अधिक विद्यार्थी भाग दे रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे साइकिल का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने स्वयं साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण और फिट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश छिकारा भी शामिल हुए। वहीं जिलों में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली स्थित जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
3: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR। तो अब रेडियो के साथ ही मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने बस्तर क्षेत्र में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं प्रदेश कार्य समिति में भी एक नए सदस्य को शामिल किया गया है। पार्टी ने दिनेश कश्यप को बीजापुर और रूप सिंह मंडावी को कोंटा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। वहीं श्रीनिवास राव मद्दी को बस्तर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी और श्रीनिवास मिश्रा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा माया झाड़ी को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में शामिल किया गया है। वहीं पार्टी ने उर्मिला तोकल को बीजापुर जिला भाजपा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। महासमुंद जिले के रेहटी खोल नाके पर पुलिस ने तलाशी के दौरान करीब 125 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 63 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहे एक वाहन को तलाशी के लिए रोका। इसमें कटहल की सब्जियों की बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा रखा गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोड़मा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक बरामद किए हैं। इसके अलावा माओवादियों की वर्दी और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। अभियान के बाद सुरक्षा बल के जवान सुरक्षित रूप से अपने शिविर स्थल लौट गए हैं। दुर्ग जिले के रौंदा स्थित सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी पाए जाने पर समिति प्रभारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जांच में 560 क्विंटल धान कम पाया गया, वहीं करीब 2100 वारदाने भी कम थे। शिकायत मिलने पर दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक ने समिति प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर ए टीम के लिए जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी मौसम में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों के 13 पारियों में 57.3 की औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन गोदाम लाइन के कमिश्निंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले गाड़ियों की परिचालन स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। इस बीच बिलासपुर से बेंगलुरु तक एक समर स्पेशल ट्रेन शुरू किया गया है। ये ट्रेन बिलासपुर से 12 जून को चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव बिलासपुर भाटापारा रायपुर दुर्ग राजनांदगांव डोंगरगढ़ स्टेशनों में दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ सहित कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ओडिशा के कुछ भाग में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चढ़ने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 12 जून से वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने के आसार जताए हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि घोषित की है। CBSE ने बताया है कि छात्र आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे।

आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। गौरेला पेण्ड्रा जिले में बचे हुए किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के लिए कल पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। सक्ती जिले के लक्ष्मण भाटा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और कोरबा जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की विशेष उड़नदस्ता टीम ने 15 स्थानों पर छापा मारकर 14 गाड़ियां और

0: रेलवे अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की विशेष उड़न दस्ता टीम ने 15 स्थानों पर छापा मारकर 14 गाड़ियां और मशीनें जब्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष निरंजन ज्योति ने आज रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल रमन डेका ने किया उद्घाटन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। के पास से जब्त किया करीब 63 लाख रुपए का गांजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: श्रोताओं, कानून की बात और प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर। संध्या के इस वक्त 7 बजने को हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इस सफर का तीसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, सोनू निगम, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में मेरे यार की शादी है। इस फिल्म से जावेद अख्तर की है रचना और प्रीतम का है संगीत। पसंद ईमेल के ज़रिए जिन श्रोता साथियों की हम तक पहुंची हैं उनके नाम हैं, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची, प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नायब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, डब्लू और बबलू, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, दुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव, नवीन, युवराज और बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनश्वरी वर्मा, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कंवर, प्रमीला, आसमा श्याम कंवर और टिकरी पारा गंडई से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना, हसन, साइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकम्मा खत्री, रमेश और मोहम्मद शादाब खत्री, लुथरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श, आतिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, राजदीप, दलजीत, गुरनूर, कुरलाल, अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बागपत से संजय, नमन, अपार और लुथरा खमरिया से ही नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, तीव्रता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप, मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, मनीषा, ममता, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, मरकाम, चंद्रपाल, मरावी, लक्ष्मी, दुर्ग से संतोष, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, बुड़गैन से हमारे साथी हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साहिद, शाजिद, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, प्रतीक्षा, समीक्षा, आराध्या, महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति, टीकू मुस्कान, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से हमारे साथी हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि रे

अंश काना, आदित्य दिवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश राहुल साहू, जलगांव जनसंघ से दिनेश काले, वंदना आदेश काले और वसुधा, ग्वालियर से सुरेश, किरण लाभिया, आरव एसी, एस के पप्पी, सहारनपुर से आंसू, गनौर से नजमुल, गनौरी फरहीन अब्बासी और दानिश गनौरी, रायपुर से विनोद, वीणा और विविधा ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम में अब मेरे यार की शादी है इस फिल्म का गीत।

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुनें। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:10 होने को हैं। लीजिए पेश है केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला। आज का विषय है वंचितों को वरीयता। ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो

0: हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50 से 90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
0: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है, और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा

0: आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल उपलब्धि है और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर 2024 में, हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाता है।

0: सकती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है, इसके रिकमेंडेशन आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास चार पांच स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता, और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर, तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड 19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से, तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया।

0: किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है, वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ, एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं, जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक, सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है।
1: जी
0: यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड 19 के

0: दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है।
1: जी।
0: और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिंस जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है, उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर, अगर हम 2031 तक बात करें, तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा। तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे, अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें,

0: मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on EIR. This program is also available on our YouTube channel News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष श्रृंखला। आज का विषय था वंचितों को वरीयता। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:42

सुरेश वाडेकर की आवाज़ में गमन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शहरार की रचना थी और जयदेव का संगीत था। चित्रपट संगीत का अगला गीत लीजिए, पेश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में, भावना फिल्म से। कैफी आज़मी के लिखे बोल

श्रोताओं, चित्रपट संगीत के सफर में लीजिए पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में अर्थ फिल्म का गीत। शब्दों के मोती पिरोए हैं कैफी आज़मी ने और संगीत से इस गीत को संवारा है जगजीत सिंह ने।

कार्यक्रम में लीजिए पेश है लता मंगेशकर और तलत असीज की आवाज़ में बाजार फिल्म का गीत, मखदूम की रचना है खयाम का संगीत।

0: श्रोताओं, बाजार फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये छोटा सा सुरीला सा सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को हैं। लीजिए, पेश है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज़ आकाशवाणी। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, प्रस्तुति सहयोग रिकॉर्डिंग और संपादन सुनील चिपड़े का। लीजिए सुनिए।
1: श्रोताओं नमस्कार। पूरा देश, पूरा हमारा श्रोता परिवार आकाशवाणी के 90 साल का उत्सव मना रहा है जो 8 जून को संपन्न होगा, लेकिन इस पूरे सफर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन हमारा पूरे भारत की रचनात्मकता का उत्सव है, पूरे भारत के शब्द संसार का उत्सव है। और चूंकि हम आवाजों से पहचाने जाते हैं, तो ये दरअसल तरह तरह की आवाजों का, देश की जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का उत्सव आवाजों के माध्यम से है। तो हम लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि अलग अलग लोग जिन्होंने आकाशवाणी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो अपने अपने स्टेशनों में हम उनकी बातचीत आपको सुनवा पाए, उनके अनुभव हम लोगों से साझा कर पाए। उसी कड़ी में हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, विशोक कुमार पांडे जी, जिन्होंने आकाशवाणी बिलासपुर में जो हमारा ऑडियो संग्रह होता है, जो हमारी आवाजों का संग्रह होता है, उसे संरक्षित रखा है, उसका नेतृत्व किया है उस पूरे यूनिट का। विशोक कुमार पांडे सर, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। बड़ा गौरव का समय है, पल है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं 8 जून को। ये एक बहुत लंबी यात्रा है, बड़ी सुखद है। निश्चित तौर पर ये समय जो है मुझे आज से लगभग 35 वर्ष पीछे ले जाता है। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत था, तो उस टाइम रोजगार को लेकर के जो जद्दोजहद थी, उसके तहत संजोग से मेरे पास लगभग इस आकाशवाणी की सेवा के साथ साथ लगभग 3 और अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में थे। लेकिन आकाशवाणी का क्रेज इतना ज्यादा था, इसमें जिस तरीके से उस समय माहौल था, मैंने इस सेवा को चुना। आज जब 35 साल बाद मैं रिटायर हुआ, तो मुझे आज बड़ा सुकून और गौरव महसूस होता है। मैं वहां से यहां ज्वाइन करने के लिए आया इलाहाबाद से, तो उद्घाटन नहीं हुआ था आकाशवाणी बिलासपुर का। मैं 7 फरवरी 1991 को यहाँ पर आकर के ज्वाइन किया, और संजोग ही था कि 1 मई 1991 को इस आकाशवाणी बिलासपुर का उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन पर्व का मैं एक साक्षी बना।
1: इस बीच ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उस समय के दौर के युवाओं का रेडियो सुनना और उसका जो ग्लैमर है, उसका जो क्रेज की बात आपने कही, वो किस तरह से था, वो अनुभव आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए।
2: उसी टाइम की एक घटना बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू इसी आकाशवाणी की सेवा के लिए था, इलाहाबाद में ही संजोग से था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो वहां पे मेरे इंटरव्यू बोर्ड में आकाशवाणी इलाहाबाद के जो डायरेक्टर थे, वो उस पैनल में थे, और उनका एक प्रश्न मेरे से पूछा गया, आकाशवाणी आप सुनते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, आकाशवाणी सुनता हूँ मैं। चूंकि कंपटीशन के लिए प्रयासरत था, विशेष रूप से समाचार सुनता था।

0: था, क्योंकि वो अपने जीके के लिए इम्पोर्टेंट होते थे। लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ बोलना था, तो मैं उनके सामने बोला कि मैं न्यूज़ सुनता हूँ, समाचार सुनता हूँ, और साथ में क्योंकि युवा था तो मुझसे, तो मैंने कहा कि मैं युग वाणी सुनता हूँ, युग वाणी। तो उन्होंने तुरंत कहा कि फिर से बताइए आप क्या सुनते हैं। तो मैंने कहा कि युवाओं का प्रोग्राम है युग वाणी। तब उन्होंने कहा नहीं, युग वाणी नहीं होता है, युवा वाणी होता है। तो मुझे अच्छा भी लगा, थोड़ा सा हेजिटेशन भी हुआ कि अब शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने गलत जवाब दिया है। लेकिन सौभाग्य से सिंगल पोस्ट थी, कॉम्पिटिटर्स लगभग 30 थे, उसमें मेरा चयन हुआ
1: वाह,
0: और बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी जो है मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये क्रेज जो है शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि आकाशवाणी जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में हो, अपने मनोरंजन के क्षेत्र में हो, अपनी सूचनाओं के क्षेत्र में हो, ये इसका योगदान जो है इतना महत्वपूर्ण है और इतना व्यापक है कि इससे कोई अछूता नहीं है। आकाशवाणी आज भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इन सब चीजों के लिए एक प्रकार से धरोहर रखने वाला, धरोहर करने वाला एक संस्थान माना जाता है।
1: अशोक सर, जैसा कि आपने बताया वो युगवाणी और युववाणी वाली जो बात है, इसलिए हमने इस प्रोग्राम के ओपनिंग में कहा कि दरअसल ये पूरे भारत की विभिन्नताओं के साथ शब्दों का उत्सव है, ये 90 साल का सफर, और आवाज का उत्सव है। चूंकि ये आवाज का उत्सव भी है, और आपने कहा कि मनोरंजन के साथ शिक्षा भी लगातार परोसता रहा है आकाशवाणी, बातचीत के इस मोड़ पर हम आपसे एक गीत की फरमाइश चाहेंगे कि कौन सा गीत इस बातचीत के बीच में हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे।
0: मैं तो लाइब्रेरी संभालता रहा हूँ, वहाँ अक्सर जो है आप लोगों के द्वारा टेस्ट किए जाते थे कि इन इन गानों को हमें आज सुनाना है। तो उसी तारतम्य में मुझे एक गाना बहुत पसंद आता था, प्यार बांटते चलो।
1: वाह, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, विशोक पांडे सर हमारे साथ हैं और जिन्होंने आवाजों को सहेज कर रखा है अपनी लाइब्रेरी में और बहुत तन्मयता से उसको सुरक्षित रखा है, संग्रहित किया है, वैसे व्यक्तित्व है। क्योंकि हम लगातार कार्यक्रमों में कहते आए हैं कि जो आवाज आप तक पहुंचती है रेडियो के माध्यम से, माइक के माध्यम से, सिर्फ आकाशवाणी वही नहीं होता है, पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं जो इस पूरे माध्यम को चलाते हैं, इस माध्यम की रचनात्मकता को बचाए रखते हैं। उनमें से हमारे साथ आज विशोक सर हैं और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, संग्रहण की जो चीजें हैं, किस किस तरह के टेप रिकॉर्ड संग्रहण होने के लिए आते थे, अलग अलग केंद्रों से भी आते होंगे, उसके संदर्भ के कोई किस्से यदि आपके जहन में अभी हो।
1: सुनील, अभी जो आपने एंकरिंग करी उसके तहत मैं पहले तो उसका जवाब देना चाहता हूँ। आकाशवाणी बिलासपुर का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पे एक से एक प्रस्तुतकर्ता हुए, चाहे वो परमानेंट स्टाफ के बतौर रहे हों, चाहे वो आकस्मिक उद्घोषक और कंपियर के रूप में रहे हों। हमारे यहाँ एक बहुत वरिष्ठ उद्घोषक हुआ करते थे श्री अरविंद माथुर और श्री हरिश्चंद्र वाद्यकार। ये लोग जब प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे तो बरबस मजबूर हो करके हमें रेडियो खोलना पड़ता था और सुनना पड़ता था और आनंदित होना पड़ता था। उसी तरीके से एक प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन, कामनी माथुर और भी इस तरीके समय समय पर एक से एक प्रस्तुतकर्ता आकाशवाणी बिलासपुर को मिलते रहे हैं। उसी तरीके से आकस्मिक उद्घोषकों में भी समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम्स प्रस्तुत करते थे जिससे एक संतुष्टि तो होती ही थी, उसमें उनका समर्पण, उनके बुद्धि विवेक और उनका एक विजन परिलक्षित होता था। दूसरा जो प्रश्न आपका था कि संग्रहण के क्षेत्र में, मैं जब आया था तो उस टाइम

0: केवल टेप्स, जिसमें से बड़े टेप और एक छोटा टेप होता था, और एलपी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक समय बदला, कुछ वर्षों पश्चात टेप्स की जगह कंप्यूटर में चीजें आने लग गई, कंप्यूटर के माध्यम से रिकॉर्डिंग होने लग गई और उसका प्रसारण होने लगा। एलपी रिकॉर्ड्स की जगह कैसेट्स आए, फिर उसके बाद सीडीज आई, फिर उसके पश्चात जो है ये ऐप तैयार हुआ, उसमें गाने रखे गए और फिर उसके माध्यम से प्रसारित किए जाने लगे। एक समय था सुनील कि जब ये परिवर्तन हो रहा था, तो उस समय आकाशवाणी बिलासपुर में कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, वो तैयार हो और उसमें वो,
1: मतलब गानों की पूरी तरह से डिजिटल लाइब्रेरी हो।
0: हाँ, तो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में कुछ जो एक दो एप्स इंट्रोड्यूस किए गए, वो कुछ केंद्रों के लिए थे, यहाँ नहीं आया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार एक अभियान चलाया और अपने तरीके का बहुत सामान्य सी प्रक्रिया के तहत तैयार किया। यहाँ पर जो आप लोग आकस्मिक उद्घोषक और कंपियर, सब लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ उसमें सहयोग किया कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा संग्रह हो गया। एलपी रिकॉर्ड्स के को हमने रिप्लेस किया, सीडीज को हमने रिप्लेस किया, और फिर हमारा ट्रांसमिशन जो है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि लाइब्रेरी से अनटच्ड, केवल स्टूडियो बेस्ड ही प्रोग्राम्स हो गए। प्रसारणकर्ताओं को भी अच्छी सुविधा मिल गई और इस तरीके से ये जर्नी जो है अपने स्वरूपों को बदलते हुए आज सामने है।
1: जी, जो हमारे नए श्रोता हैं उनको हम बताना चाहेंगे, जो टेप और स्पूल की बात हो रही है, दरअसल वो आपने आनंद फिल्म में देखा होगा कि आनंद फिल्म में आखिरी में टेप चलते चलते टूट जाता है, बाबू मोशाय वाला जो संवाद आता है, वो उस तरह के टेप से लेके फिर एलपी रिकॉर्ड्स, ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स, फिर सीडी, उसका डिजिटाइज होना, इस पूरे प्रोसेस के दौरान विशोक सर हमारे साथ रहे हैं और एक टीम बना करके उन्होंने इस पूरे प्रसारण को डिजिटल माध्यम तक पहुंचाया है। तो उसके लिए हम पूरे आकाशवाणी परिवार, पूरे श्रोता परिवार की ओर से आपको धन्यवाद तो देते ही हैं। साथ में एक बात और आपके सर्विस के दौरान आकाशवाणी बिलासपुर में खासकर हुई है कि आप तो अपने पद पर थे ही, लेकिन समय समय पर चूंकि हमारा छोटा स्टेशन है, बहुत सारे अफसर छुट्टियों में जाते रहे हैं, तो छुट्टियों के दौरान अपने से सबॉर्डिनेट को वो चार्ज दे करके छुट्टी पे जाते हैं, तो यहाँ रहते हुए लगभग आपने हर पोस्ट की जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर निभाई ही है, उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है?
0: उसका एक्सपीरियंस सुनील बहुत ही सुखद है, और वो इसलिए कि आकाशवाणी का ये जो कार्यक्रम प्रसारित करने की प्रक्रिया है, इसमें सभी लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करते।
1: जी,
0: उस टाइम ऐसा होता था या ऐसा उत्साह बना रहता था कि हमारी आवाज जो है रेडियो पे चली जाए, हम ये प्रोग्राम तैयार कर लें, हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें आकाशवाणी को। कार्यक्रम निर्माण में सबके सब अपना योगदान देने के लिए हमेशा जो है प्रयासरत हुआ करते थे। उसी तारतम्य में मुझे भी इस तरीके से ढाला गया था, या मैं ढल भी गया था, कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती थी, बड़े विश्वास के साथ मैं जिम्मेदारी सौंपते थे अधिकारी वर्ग, उसको मैं परफॉर्म करता था। मैं एक पद में रहते हुए भी आकाशवाणी के विभिन्न पदों पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को मैंने संपादित किया, चाहे चिट्ठी मिली हो या कुछ और प्रोग्राम्स इस तरीके से हो, चुनाव उस टाइम जो होते थे उनका लाइव प्रसारण हो। एक स्टूडियो में ऐसा होता था कि मैं, अरविंद माथुर, सुप्रिया भारतीयन, ये सब एक जो है टेप चलता रहता था, दूसरे टेप की तैयारी हम लोग कर लेते थे, दूसरे टर्न टेबल पे उसको लगा के रखते, सबके सब इतना एक्टिव हुआ करते थे, न खाने का, न पीने का, न कुछ नहीं, केवल और केवल ये हुआ करता था कि हम प्रोग्राम को अच्छी से अच्छी तरीके से एयर तक पहुंचा पाए। सब में बहुत एनर्जी दिखती थी, बहुत ही, मतलब ये 35 वर्ष की मेरी जर्नी जो है ना, आज भी मैं अगर छत पे बैठता हूँ तो मेरा आकाशवाणी केंद्र से बहुत थोड़ी ही दूर पे मकान है, जहाँ छत में बैठने से टावर दिखता है। तो आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं जब टावर देखता रहता हूँ, तो अपने दिनों को याद करता हूँ और बहुत सुखद अनुभूति होती है।
1: आप सभी के प्रयास से उसी टावर की ऊंचाई पर आज भी आकाशवाणी खड़ा है प्रोग्राम के मार्फत। जो आपने बात कही कि एक दूसरे के साझेदारी की, एक साझे से पूरा आकाशवाणी परिवार हमारा चलता रहा है, तो इस समय कोई ऐसा गीत सुझा दीजिए जिसे

0: हम बजा करके श्रोताओं को उस साझेदारी की याद भी दिला सके।
1: आकाशवाणी बिलासपुर हमेशा प्यार बांटता रहा है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। इस गाने को अगर सुना जाए तो बहुत अच्छा लगेगा।

0: प्यार बांटने के 90 साल इस सफर के दौरान आकाशवाणी बिलासपुर ने भी जन्म लिया था 1 मई 1991 को, और अभी हालिया ही हमने अपना स्थापना दिवस का उत्सव भी मनाया है। आप उस समय से आकाशवाणी बिलासपुर में हैं। विशोक सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उद्घाटन दिवस पर चित्र क्या था, वो गतिविधि क्या थी यहाँ की?
1: 1 मई 1991, इतना मतलब आज भी याद कर लो तो एक सिहरन पैदा होती है।
0: वाह वाकई।
1: सुबह मतलब कह लीजिए कि 30 अप्रैल को हम लोग जो है इतने ज्यादा उत्साहित थे और कि कल है यार, कल 1 मई है, कल हमारे आकाशवाणी का उद्घाटन होना है। हम लोग 9 बजे ही उपस्थित हो गए थे, और कोई नारियल की व्यवस्था, अगरबत्ती की व्यवस्था, सब कोई न कोई काम में लगातार जो है करते रहे। उस टाइम स्टेशन डायरेक्टर थे श्री श्रीकांत ठकार जी, और स्टेशन इंजीनियर मिस्टर अरोरा, ये दोनों भी मतलब खासकर विशेष रूप से मैं श्रीकांत ठकार साहब को बोलूँगा, वो तो स्वयं भी एक ग्रेड आर्टिस्ट थे, तो उनमें स्टेशन डायरेक्टर की जो एक गरिमा होती है उसको भी वो छोड़ करके मतलब कि साफ सफाई से लेकर के हर चीज को इतना जा करके दौड़ दौड़ करके, और उस समय वो ये भी भूल गए थे कि किससे क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, खुद ही जा करके सब कुछ, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, ऐसा करते कराते वो लगभग 4 बज गए। 4 बजे हम लोग सब उपस्थित हो गए थे कंट्रोल रूम में, और ट्रांसमीटर सब पूजा पाठ करनी करानी थी। केंद्राध्यक्ष थे मिस्टर अरोरा जी, तो ये हुआ कि इन्हीं के हाथों से हो। मैं आपको बताऊं सुनील, उस टाइम उन्होंने ये कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे द्वारा नहीं, वो ठकार साहब के हाथों से होगा। ठकार साहब बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरे द्वारा नहीं, हम सबके द्वारा हम करते हैं।
0: क्या बात है, क्या
1: तो
0: है?
1: तो ये मतलब कि अभिभूत कर देने वाला वो दृश्य था। और अरविंद माथुर, श्रीमती कामनी माथुर, इस तरीके से कंट्रोल रूम के सदस्य मिस्टर शर्मा जी, आदित्य नारायण पांडे, ये सब काफी साथ में रहे। और फिर उसके पश्चात जब अगरबत्ती जलाई गई, नारियल फोड़ा गया, और फिर अरविंद माथुर जो कि आकाशवाणी अंबिकापुर से आए हुए थे, उन्होंने आकाशवाणी का फेडर ऑन किया और बोला कि ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। उस समय मतलब आंसू गिरना भर केवल शेष रहे। ये नहीं था कि आकाशवाणी केंद्र जो है उद्घाटन हो गया, बल्कि ये कि हम आकाशवाणी के इस उद्घाटन के अवसर पर शरीक हुए। अब जो है हमारा आकाशवाणी बिलासपुर इस क्षेत्र की सेवा करेगा, अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम प्रस्तुत करेंगे।
0: वो जो चित्र आपने खींचा है वाकई वो आंखों के सामने दिख रहा है कि किस तरह की भगदड़ हुई होगी, और पहली आवाज जब आकाशवाणी से डिलीवर हुई होगी लोगों के घरों में, वो जो आप कह रहे हैं कि उत्साह से खुशी से नम कर देने वाला पल था।
1: दूसरे दिन जब पेपर में छपा, इतनी प्रशंसा की गई थी, वो करीब 4 कालम का वो था, रिपोर्टिंग थी, उसमें अधिकांश लोगों के नाम, सुखद तो होता है, अच्छा तो लगता है।
0: वाकई आकाशवाणी की भूमिका परिवार के बीच एक सदस्य की तरह है लोगों के घरों में जो सुनते हैं, और वहीं आकाशवाणी की भूमिका एक डाकिये की तरह भी है जो बहुत सारी अच्छी खबरें, बहुत सारा ज्ञान और डिलीवर करता है, लोगों के घरों तक पहुँचाता है। तो उस तरह की चिट्ठी पत्री वाले कार्यक्रम भी आप करते रहे हैं।
1: इसमें मैं सुनील बताऊं, जितनी

0: मेहनत जितनी लगन हमारे यहाँ के प्रस्तुतकर्ताओं का है उतना ही हमारे श्रोताओं का इसमें वो है। हमारे जो सुधी श्रोता रहे हैं उस टाइम से आप आश्चर्य करोगे कि उनमें अपने कार्यों को अपने घर के जरूरी कार्यों को भी छोड़ करके वो आकाशवाणी बिलासपुर को ट्यून करने नहीं भूलते थे और उनके माध्यम से जो चिट्ठी पत्र आती थी कई चिट्ठियां तो ऐसी होती थी कि वो भावुक कर देती थी, मतलब कि उसमें उनकी जो भावनाएं शब्द का रूप लेती थी उसको पढ़ते पढ़ते ही चिट्ठी मिली कार्यक्रम के दरमियान हम लोगों को मतलब हम लोग भी भावुक हो जाते थे। इतना लोगों का स्नेह था, इतना आकाशवाणी बिलासपुर के प्रति श्रोताओं का प्यार हो गया था। वो सुझाव भी देते थे कि इस कार्यक्रम में ऐसा हो जाए, उस कार्यक्रम में ऐसा हो जाए, फिर और कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए। पहले तो सिंगल ट्रांसमिशन हुआ करता था, हमारे श्रोता ही सब जो है बार बार डिमांड करते थे कि नहीं ये सुबह का भी शुरू हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत जल्दी शासन ने बात भी सुनी। आकाशवाणी का उद्देश्य भी यही है कि जनमानस तक शिक्षा और सूचना और मनोरंजन का जो एक समग्र उद्देश्य रहा है वो लोगों तक प्रस्तुत हो, लोगों तक पहुंचे और उससे लोग लाभान्वित होते रहें।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भावनाओं की बात की, संवेदनाओं की बात की, हम इस पूरे 90 साल में उन भावनाओं का, उन संवेदनाओं को जो हमने जज्ब करके रखी हुई उसी का उत्सव दरअसल हम मना रहे हैं। इस बातचीत के इस पड़ाव में कौन सा गीत आप लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहेंगे?
0: हम प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे और श्रोता लोग अपनी चिट्ठियां भेजते थे। इस आदान प्रदान में एक गाना मुझे याद आता है, फूल तुम्हें भेजा है खत में।

0: श्रोता, हमारी इस बातचीत में हमारे साथ अशोक कुमार पांडे सर हैं। लाइब्रेरी चारों तरफ आवाजों का खजाना आपके इर्द गिर्द हमेशा बना हुआ, उस आवाजों के खजाने में से आपकी कौन सी यादें हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आपने संग्रहित किया?
1: सुनील, आकाशवाणी की जो लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर जो सबसे बड़ा संग्रह होता है गानों का और ये सब चीजों का तो होता ही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग होता है आर्काइव्स का, उसमें प्रमुख व्यक्ति देश में होते हैं उनसे लेकर के क्षेत्र में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी न किसी रूप में जो समाज को अपनी चीजें देते हैं, उनका आकाशवाणी जो है हमेशा रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके लाइब्रेरी में ही संरक्षित किया जाता है। आकाशवाणी बिलासपुर में भी इसी तरीके के प्रयास हमेशा होते रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, देश के विभिन्न राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक क्षेत्र में जब आते थे तो वहाँ पे ओबी के रूप में हम लोग जाते थे, रिकॉर्ड करते थे, फिर यहाँ से प्रसारित करते थे और वो चीजें जो हैं आज भी संरक्षित लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए, साहित्य के क्षेत्र में विनय पाठक जी, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, इन लोगों का भी हमारे यहाँ वार्ता के रूप में या साक्षात्कार के रूप में कार्यक्रम जो हैं वो रखे हुए हैं। मनीष दत्त जो हैं गायन के क्षेत्र में जो आकाशवाणी बिलासपुर को दिया है वो अपने आप में अक्षुण्य है, आज भी वो बहुत याद आते हैं। इतने अच्छे

0: अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर को उन्होंने दिए हैं, आज भी संरक्षित हैं, आगामी कई वर्षों तक वो याद किए जाते रहेंगे। इस तरीके के बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है अपने इस सेवा काल के समय में। मतलब कि आज से अगर 20 साल पहले कोई कार्यक्रम, जैसे मुझे याद आता है मनीष दत्त जी का एक कार्यक्रम माँ दुर्गा पे उन्होंने एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया था, वो आज भी उसको हम नव दुर्गा के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर जब हम प्रसारित करते हैं तो आज भी उतना ही वो नवीन लगता है।
1: और हर नवरात्र में वो प्रसारित होता है।
0: इतना कर्णप्रिय है कि अब शब्द नहीं है उसकी व्याख्या करने के लिए। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोक कलाकार हैं, जैसे सुरुज भाई खांडे, तीजन भाई, और भी जो बांस गीत है और इस तरीके की सब चीजों को, इनके भी कृतित्व जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं गाने, वो सब रिकॉर्ड हैं, उनके इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी धरोहर के रूप में संरक्षित है।
1: आपके अनुभवों के परते हमें लग रहा है कि और खोलते जाएं लगातार, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पुरानी बातें जो आज जाहिर हो रही है, वो श्रोताओं तक पहुंच रही है। लेकिन इस जगह पर एक गीत आपसे चाहते हैं।
0: व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है उसके पास केवल एक ही काम बचता है कि वो अपनी इस यात्रा में क्या क्या अनुभव किए हैं, कितनी कहानियां उसके जीवन में सब घटित हुई हैं, वो उसको सुनाता है जब, ना सुकून महसूस होता है
1: जी।
0: कहानियां अनंत हैं, बहुत ज्यादा हैं, वो पढ़ते खुलती रहेंगी। एक गाना सुन लिया जाए, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत।

0: हमारी भावनाओं के गीत आकाशवाणी हमें हमेशा देता रहा है, जो हमारे दिल के भीतर तक उतरते रहे हमेशा। और पांडे सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आकाशवाणी से आपके साझेदारी के दौरान आपको ऐसा क्या लगा, ऐसे कौन से अनुभव हैं कि आपको लगा कि हाँ, ये मेरे भीतर भी ये बदलाव है और ये सामाजिक रूप से भी बदलाव आप देख रहे हैं, चाहे रचनात्मक हो, चाहे लेखन का हो, और विस्तृत रूप से जो भी आप कहना चाहें।
1: सुनील, आकाशवाणी जो है ना, वो समाज के हर पहलुओं को छूता है और बहुत गहराई से छूता है, बहुत असर भी डालता है। तो आकाशवाणी बिलासपुर में आने के बाद मेरी बहुत सी चीज़ों में बदलाव आए। किस तरीके से सोच करके एक प्रोग्राम को स्वरूप दिया जाए, स्क्रिप्ट करते समय शब्दों का चयन किस तरीके से किया जाए, तो मतलब आप में जो एक छुपी हुई प्रतिभा है ना, वो आकाशवाणी में आकर के वो निखर जाती है। तो यहाँ आने वालों में भी बहुत बदलाव होता है, और समाज में जब हम किसी न किसी रूप में संदेश देते हैं, घटनाओं के साथ संदेश देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट या उसका प्रभाव जो है समाज में बहुत अच्छा पड़ता है। यूं समझिए कि लोक कलाकार साहित्य के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, उस कला के माध्यम से जो समाज को वो देना चाहते हैं, व्यापक रूप से समाज में पहुंचता है और व्यापक समाज जो है उससे लाभान्वित होता है। ये आकाशवाणी कुछ न कुछ अवश्य देता है।

0: भाव भी डालता है और उनमें परिवर्तन की क्षमता भी रखता है, वो गुण भी उपलब्ध है और समाज के हर वर्ग को इससे फायदा मिलता रहे। और जिस तरीके से आकाशवाणी के 90 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि वो 190 साल तक या उससे भी दूर दूर तक आकाशवाणी जो है हमेशा इसी तरीके से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को गौरवान्वित करता रहे।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, समाज के हर पहलू को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की बात आकाशवाणी लगातार करता रहा है और इस 90 साल के उत्सव में यही कि कहने बोलने के चयन के प्रति जो आपने कहा कि ग्राह्यता और सरलता आकाशवाणी के पास है, वो किसी और माध्यम के पास शायद नहीं है। इस माध्यम के परिवार का एक हिस्सा आप रहे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और 90 साल के उत्सव के इस खास बातचीत में आज आप आकाशवाणी बिलासपुर के स्टूडियो में आए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की थी। प्रस्तुति सहयोग, रिकॉर्डिंग और संपादन सुनील चिपड़े का था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का महकता हुआ सलाम। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय अभिनेत्री के विषय में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही पूरे हिंदुस्तानी पारंपरिक स्त्री की छवि में खूब सराहना और तवज्जो बटोरी। इन्होंने अपने अभिनय के सामर्थ और गरिमा को पर्दे पर इस तरह पेश किया कि हर देखने सुनने वाला दर्शक इन्हें आधुनिक युग की रोल मॉडल समझने लगा। इनकी सादगी ने जहां निर्देशकों और निर्माताओं को प्रसन्न किया, वहीं इनकी बेहद सरल और सहज भूमिकाओं वाले किरदारों ने आलोचकों को भी इनकी मिठास और चेहरे की माधुरी का दीवाना बना दिया। अब ये तारिका कौन है, इसे जानने के लिए आइए सुनते हैं इन्हीं पर फिल्माए गए इस बेहद खूबसूरत से गीत को।

श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम के आज के इस छोटे से सफ़र में हम बात कर रहे हैं वर्ष 2002 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अमृता राव के विषय में, जिनकी पहली ये फिल्म अब के बरस के लिए उन्हें फिल्म फेयर में नामांकित किया गया। इसके बाद 2003 में अमृता राव की फिल्म आई इश्क विश्क, जिसमें ये नज़र आई शाहिद कपूर के संग, जो बेहद हिट फिल्म रही। इश्क विश्क फिल्म में अमृता राव के काम और अभिनय को इतना पसंद किया गया कि उन्हें आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यही वो फिल्म थी जिसके लिए उन्हें स्टारडस्ट का भी अवार्ड प्राप्त हुआ। पर्दे पर अमृता राव कभी आधुनिक वेशभूषा में नजर आईं तो कभी पारंपरिक भारतीय परिधानों में। बहरहाल, किरदार कोई भी क्यों ना हो, अमृता अपनी सादगी से काम करती गईं और आगे चलकर विवाह जैसी फिल्मों में अभिनय करने का उन्हें मौका मिला और यही वो फिल्म थी जो उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई, जिसकी बदौलत अमृता राव को घर घर में आदर्श बहू बेटी होने का खिताब मिल गया। विवाह फिल्म की सफलता में अमृता का योगदान अविस्मरणीय माना जाता है और इसी फिल्म के लिए उन्हें आनंद लोक पुरस्कार से भी नवाजा गया। विवाह फिल्म के पश्चात अमृता नजर आई वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म में और इस फिल्म में उनकी भूमिका को खूब सराहा गया और इस फिल्म की भूमिका के लिए भी उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सूत्र बतलाते हैं कि अमृता राव की प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई के ही गर्ल्स स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने मुंबई के सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद वो मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश की और फिर फिल्मों की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया। 2006 में शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में अमृता राव नजर आई अपने अपोजिट, अपने हीरो के साथ। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। अमृता राव की एक और फिल्म जिसे खूब पसंद किया गया वो थी मस्ती। ये फिल्म आई थी 2004 में और अमृता राव के साथ विवेक ओबेरॉय की जोड़ी को भी इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया, मगर कुछ समय बाद इन्होंने सत्याग्रह जैसी गंभीर फिल्मों में भी काम किया जिसमें उनकी संजीदा अभिनय की खुले मन से बहुत सराहना हुई। श्रोताओं, आज 4 जून का दिन है और आज का दिन अमृता राव के जन्मदिन का दिन है। लंबे समय से फिल्मों से दूर रहने वाली अमृता अब दोबारा

सारा फिल्मों में नजर आ रही हैं जॉली एलएलबी 3 के साथ। तो हमारी तो यही हमेशा से दुआ रही है कि हमारी पसंदीदा अभिनेत्री और तारिकाएं हमेशा पर्दे पर हमें दिखाई देती रहें, हंसती बोलती गीत गाती और बढ़िया से बढ़िया अभिनय करती हुई। आइए सुनते हैं अमृता के ही फिल्म का एक और बेशकीमती नगीना।

श्रोताओं, छोटी छोटी आंखों वाली और प्यारी सी मुस्कान और बेहद सादगी पसंद अभिनय करने वाली अमृता राव के जन्मदिन पर केंद्रित ये थी आज की हमारी रजनीगंधा। हमारी तो कोशिश बस यही होती है कि हम उन सभी कलाकारों के कामों की सराहना करते चलें जिन्होंने अपने अभिनय के बूते, काम के बूते, परिकल्पनाओं के बूते हमें मनोरंजन से नवाजा है। आइए सुनते हैं रजनीगंधा के आज के सफर का अंतिम गीत, अमृता राव के ही फिल्म का।

0: श्रोताओं, रजनीगंधा का आज का सफर केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव के जन्मदिन पर, और इस गीत के साथ ही रजनीगंधा कार्यक्रम से दीजिए विदा आपकी अपनी अंतरा को नमस्कार। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार अब दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान

भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान

0: के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चवालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को

बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते।

0: again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं, समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार का यह अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। और ठीक है।

और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब की बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003, केन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना, और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006, एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की ऑर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव थे।

साल 2006 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म आई विवाह। इस फिल्म में अमृता राव के दूल्हे बने थे शाहिद कपूर।

0: यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।
1: भीनी भीनी।

0: अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।
1: चल 9 बजे तुम

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

जिसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीनाताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही हैं शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी, रूमानी, नाजुक और नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग, आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी, कोई ख्याल, कोई फलसफा ऐसी शामों का मंजर बन जाता है।

कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई गीत हमारी बात कहता नजर आता है, यूं लगता है कि यही, बस यही तो थी हमारी कैफियत, हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं, कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने इसीलिए हमारे हमदम, हमारे मीत बन जाते हैं।

छाया गीत में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुएं, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं। अंधेरे में घिरी रात ऐसे चमक उठती है जैसे हजार हजार चराग जल उठे हों।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

मौसम सीधे मन पर असर डालता है। इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों पर। पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े हैं ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम, नगमा।

जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार, सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर। जाने कौन है जो किसी को रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता। जाने कौन है जो वक्त को रोक लेना चाहता है। जाने कौन है जो दूर से पुकार रहा है।

श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, रात के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी।

0: वाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर

0: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कल सुबह हम आपकी सेवा में 5:55 पर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।